0: साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलिंग कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है।

0: मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, भर्तृहरि के नीति शतकम के अनुसार महापुरुषों का चित्त समृद्धि के समय पुष्प के समान कोमल हो जाता है, किंतु वही चित्त संकट के समय पर्वत शिला के समान सुदृढ़ हो जाता है। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरित मानस गान भाग 197।

राम सखा निषाद राज को गले लगाकर भरत ने कुशलक्षेम पूछा। निषाद राज ने कहा, हे प्रभु, कुशल का स्रोत तो आपके चरण हैं, जिनके आज मुझे दर्शन हो गए और आपकी कृपा पाकर मेरी करोड़ों पीढ़ियों का कल्याण और मंगल हो गया। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ, किंतु श्री राम ने मुझ जैसे अधम को अपनाकर विश्व का आभूषण बना दिया है। निषाद राज की प्रीति देख और उनके वचन सुनकर छोटे भाई शत्रुघ्न उनसे मिले। अपने कुल और धाम बताते हुए निषाद राज ने सभी रानियों को प्रणाम निवेदित किया। रानियां उन्हें लाख वर्ष की आयु प्राप्त करने का आशीष देती हैं। ये अद्भुत दृश्य देखने वाले अनायास ही कह उठते हैं कि मनुष्य जीवन धारण करने का वास्तविक लाभ तो निषाद राज ने पाया है। निषाद सेवकों ने घरों, वृक्षों के नीचे, बागीचों तथा आसपास के वन उपवन में भरत जी के पूरे दलबल के विश्राम के लिए समुचित प्रबंध कर दिए। श्रृंगवेरपुर को देख भरत का शरीर प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ गया। गंगा के दर्शन कर सभी यही कामना प्रकट करते हैं कि श्री राम के चरणों में उनका प्रेम कभी कम न हो।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं शमशाद बेगम और चितलकर की आवाज़ों में पतंगा फिल्म के गाने के साथ। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं सी रामचंद्र।
1: बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

आइए अब सुना जाए राजा मेहंदी अली खां का लिखा और एस डी बर्मन का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज़ है गीता दत्त की, फिल्म का नाम दो भाई।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब

0: विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: हमारी सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: 10 लाखांची लॉटरी मला, वाव,
2: फसल्या ऑफर्स पासून सावधान।
3: RBI सांगते,
4: जाणकार बना, सतर्क रहा।

कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: लता मंगेशकर आणि किशोर कुमार यांच्या स्वरामध्ये आनंद बक्षी यांची गीतरचना आपण ऐकलीत. हिरापन्ना या चित्रपटातलं हे गीत संगीतबद्ध केलं होतं आर डी बर्मन यांनी. श्रोतेहो, या गीताबरोबरच हिंदी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम आता इथेच समाप्त करत आहोत. यानंतर दुपारी ठीक 2:15 हिंदी समाचार अर्थात हिंदीतून बातम्या आमच्या दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होतील, आम्ही सहक्षेपित करत आहोत.
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे. कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है. बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुगियो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया. और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है. उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें. श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है.
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है. आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है. भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है. इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे. साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है.
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है. ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर

0: सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
0: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
1: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। CBSE ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

0: इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपए की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायन काल

0: दो से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोते हो, हे आहे आकाशवाणी नेटवर्क आणि आपण ऐकता आहात पुणे विविध भारती 101 FM, पुण्यातलं पहिलं लोकप्रिय FM चॅनल। तसंच आमचे कार्यक्रम आमच्या न्यूज ऑन AIR या मोबाईल स्ट्रीमिंग ॲपच्या माध्यमातून आपण ऐकू शकता जगभरात सर्वत्र। दुपारचे ठीक 2:30 आणि 30 सेकंद झाली आहेत। प्रसारणसभेत ही वेळ विशेष गीत गंगा या कार्यक्रमाची। आज या कार्यक्रमात सिनेनाट्य अभिनेता आनंद इंगळे यांच्याशी झालेल्या गप्पा आणि त्यांच्या आवडीची गाणी या कार्यक्रमाचा भाग 8 प्रसारित करणार आहोत। कार्यक्रमाचे संवादक आणि सादरकर्ते संजय भुजबळ। ऐकूयात कार्यक्रम विशेष गीतगंगा।
3: श्रोतो, विशेष गीतगंगा या कार्यक्रम मालिकेत सध्या आपण ऐकत आहात सिनेनाट्य अभिनेता आनंद इंगळे यांच्याशी गप्पा आणि त्यांच्या आवडीची गाणी। आज भाग 8 विशेष गीत गंगा सादर करते संजय भुजबळ।
4: अरे तुमच्यात सामील हो

0: हृदयो हे आहे पुणे विविध भारती 101 FM. दुपारचे ठीक 3 वाजलेले आहेत. आता यानंतर संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत आमच्या राष्ट्रीय वाहिनीवरून प्रसारित होणाऱ्या विविध रंगी कार्यक्रमांचं सहक्षेपण आम्ही करणार आहोत. यामध्ये सुरुवातीला मन चाहे गीत काही क्षणात.
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन. प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत. इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है. मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार. जी तो शुरू करते हैं आज का ये सफर आपके मनपसंद गीतों का. तो पहला गीत सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं ये. कहाँ से लिखा है आपने? आपने लिखा है गांव जाखोद राजस्थान से, पूजा खटक बिमला देवी शंभुदयाल खटक ने. और इसी ये खत हमें मिला है कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा गुजराती. और ये खत हमें मिला है बीकानेर से और राजस्थान से. अच्छा, आप राजस्थान के थे श्रोता जिनका नाम हमने पढ़ दिया है. आप है चेतक सर्कल उदयपुर से मुकेश जीनगर, रेणु जीनगर, अजय, प्रिंस और कुलदीप. आप सभी सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज मोहम्मद रफी की, और फिल्म का नाम है जीने की राह.

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अनामिका से। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। इस गीत को सुनने की आप सभी ख्वाहिशमंद हैं। आप हैं कोल्हापुर से सतीश वाघमारे, आतिश वाघमारे, स्वाति, वर्षा वाघमारे, श्रमण वाघमारे, श्रमेण वाघमारे। अच्छा, आपने चंदन नगर सातारा से ये खत लिखा है। और उल्हासनगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर, चेतन शामतकर ने खत लिखा है हमें। आप हैं पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और अलीना मंसूरी। नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद। और गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार और मास्टर मनीष। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनामिका में।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं लिखने वाले गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोधले, आरती जोधले और इनके परिवार वाले। ये खत हमें मिला है छत्तीसगढ़ से जिला धमतरी से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू। यानी ये खत है इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से। हमें उम्मीद है आपने अपना नाम सुन लिया होगा। और ये खत मिला है गाजियाबाद से, नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद का। और वनोजा तांडा से सानिका राठौड़, एस आर टेलर, जय राठौड़, सुनील राठौड़, इंदुबाई राठौड़ और कुमार आशीष का। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोंसले को फिल्म परवाना में। गीत को कैफी आजमी ने लिखा है और संगीत मदन मोहन का है।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अमर प्रेम का गीत, आवाज किशोर कुमार की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने। इस गीत को सुनने के लिए आपने हमें खत लिखे। आप हैं बोडोसरा नेला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू। और ये खत आया है खमहरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रदीप कुमार का। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: किशोर कुमार की गाय फिल्म अमर प्रेम के इस गीत के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: मनचाहे गीत।
2: मनचाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: रवि शर्मा लिखित नाटक सुनिए विजयमाल।
1: सब यथास्थान विराजे, कार्यवाही आरंभ की जाए।
2: जो आज्ञा महाराज।
3: महाराणा की जय। राणा हाड़ा जी का विशेष दूत एक संदेश लेकर आया है और दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है।
1: आने दिया जाए।
4: महाराणा की जय।
5: राणा हाड़ा जी ने यह पत्र आपकी सेवा में प्रेषित किया है।
1: मंत्री जी,
2: अन्नदाता,
1: पत्र का भावार्थ व्यक्त कीजिए।
2: अन्नदाता, राणा हाड़ा जी अपनी अतीत सुंदरी कन्या का विवाह हमारे वीर सामंत चूड़ावत से करना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए आपकी अनुमति मांगी है।
1: यदि चूड़ावत जी को यह प्रस्ताव स्वीकार है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है?
2: महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं इस विषय में कुछ निवेदन करूं।
1: आज्ञा है मंत्री जी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं।
2: महाराज, सरदार चूड़ावत हमारे वीर सेनापति हैं। राणा हाड़ा ने उन्हें अपनी सुंदरी कन्या के लिए मांगकर बुद्धिमता का परिचय दिया है। पर मेरी सम्मति में तो वीर चूड़ावत की जीवन संगनी कोई वीर कन्या ही हो सकती है, हाड़ी कुमारी नहीं।
1: महामंत्री जी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हाड़ी कुमारी छत्राणी नहीं है? क्या उसकी रगों में पूर्वजों का रक्त प्रवाहित नहीं हो रहा?
2: महाराज,
1: हम आपकी शंका का कारण समझने में असमर्थ हैं।
2: महाराज, जहां तक मुझे ज्ञात है, हाड़ी कुमारी में वीरोचित गुणों का अभाव है। सामंत चूड़ावत का बचपन तो तलवारों की खनखनाहट में पला है और यौवन युद्ध क्षेत्र में पल्लवित हुआ है। कहीं ऐसा न हो कि हमारे इस उगते हुए सूर्य को ग्रहण लग जाए। विद्वानों ने कहा भी है, भार्या रूपवती शत्रु, यूं ही नारी का रूप और यौवन पुरुष की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जानबूझकर इस दुर्बलता को गले की माला बनाने की सलाह मैं नहीं दे सकता।
1: चूड़ावत जी।
6: महाराणा,
1: आपकी इस विषय में क्या सम्मति है? क्योंकि वीर राजपूत केवल अपने ही विचारों और अपने ही भुजबल के विश्वास पर आगे बढ़ता है, इसलिए निसंकोच आप अपने विचार व्यक्त कीजिए।
6: महाराणा, हाड़ी कुमारी के अद्भुत रूप और लावण्य की चर्चा सुनकर भी मैंने कभी भावुकता का आश्रय नहीं लिया, पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि रूपवती भार्या को चाहे शत्रु कहा जाए अथवा उसे पुरुष की दुर्बलता की संज्ञा दी जाए, पर इन सब के साथ साथ वो पुरुष के जीवन की एक महान प्रेरणादायक शक्ति भी है। वह शक्ति जिसके अभाव में शिव भी शव के समान हो जाता है। आज एक नारी के सौंदर्य ने मेरी वीरता और पुरुषत्व को चुनौती दी है। यदि महाराणा की आज्ञा हो तो स्वीकार कर लूं इस चुनौती को।
1: हम आपको ये चुनौती स्वीकार करने की अनुमति

0: मलखान सिंह
1: जी महाराज,
0: राणा हाड़ा को एक शुभ संदेश दे दो कि हमें ये संबंध स्वीकार है। महामंत्री जी,
2: जी महाराणा,
0: सावन चूड़ावत के विवाह का आयोजन राजकीय सम्मान से अतिशीघ्र किया जाए।
2: जो आज्ञा महाराज।

0: भैया वह भी बहुत ही सुंदर हैं।
1: सच
0: सच भैया, देखोगे तो पागल हो जाओगी।
1: तनिक अपनी भाभी को हमें भी तो दिखा दो।
0: इतने उतावले क्यों हो रहे हो, थोड़ी देर और ठहर जाओ ना। और हाँ, मेरी मुंह दिखला मी।
1: ये लो।
0: कितनी अच्छी है ये माला।
1: अब बोल कहाँ है तेरी भाभी।
0: अरे तारा, कहाँ चली गई? सब भाभी को ही घेर कर बैठी है।
1: अच्छा,
0: कोई सुनता ही नहीं। तारा तारा
2: आई।
0: देख तारा, जरा भैया को ऊपर वाले कमरे का रास्ता दिखा देना, बेचारे थक गए हैं।
2: आइए सामन, ऊपर जाकर विश्राम कीजिए और प्रतीक्षा भी।
1: प्रतीक्षा? प्रतीक्षा किसकी?
2: चंद्रोदय की। आज आपके शयन कक्ष में पूर्ण चंद्र का आगमन जो होने वाला है।
1: ओ, अब समझा, तुम बहुत नटखट हो।
0: आओ भाभी, इधर आओ, यहाँ बैठो। हाँ ऐसे,
3: यहाँ यहाँ क्या करना होगा मुझे?
0: ये हमारी कुल देवी है, सौभाग्य और यश की देवी।
3: अच्छा,
0: नववधू इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर ही पति के दर्शन कर सकती है। आज के दिन वधू जो कुछ इनसे मांगती है वो उसे अवश्य मिलता है।
3: अच्छा
0: भाभी, मांगो जो भी इच्छा हो।
3: मैं केवल यही मांगती हूँ कि मेरे पति पर कभी भी किसी भी प्रकार का कलंक न लगे, यश और सौभाग्य की वर्षा होती रहे उन पर।
0: धन्य हो भाभी, तुमने वही मांगा जो मांगना चाहिए था।
3: इसके सिवा और मैं मांग ही क्या सकती थी?
0: भाभी, तुम्हारे ये विचार तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। और हाँ भाभी, अब रात अधिक हो रही है, हम सब तो आज रत जगा करेंगे। तुम ऊपर जाओ, आज तुम्हारी मधु यामिनी है ना?
3: ना ना, मैं भी तुम लोगों के साथ रत जगा करूंगी।
0: रत जगा तो करोगी ही, पर ऊपर यहाँ नहीं। भाभी शर्माओ नहीं, ऊपर जाओ। नहीं जाती? अच्छा ठहरू, मैं भैया को बुलाती हूँ, तुम्हें गोद में उठा कर ले जाएंगे। हाँ
3: अरे
0: बुलाओ भैया।
3: मैं जाती हूँ।
0: तारा सुन जी, भैया ऊपर के कमरे में ही है ना?
3: जी हाँ, सामन तो वहाँ पहले से ही हाड़ी रानी की प्रतीक्षा में बैठे हैं।
0: बस अब खूब मजा आएगा।
3: कितना सुंदर कक्ष है ये, पलंग, गुलाब की पंखुड़ियाँ, फूलों के पर्दे और ये तलवार अवश्य मेरे स्वामी की है। और वो चित्र किसका है? ओह स्वामी, प्रियतम, कितना तेजस्वी मुख है। आज मेरी चिर संचित अभिलाषा पूर्ण हुई, मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे। जब तुम सामने आओगे तब तो शायद लज्जा के मारे में कुछ बोल भी नहीं। कौन?
1: स्वागत है।
3: ओह, आप यहाँ?
1: हाँ जी, मैं यहाँ कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था।

0: पर ये घूंघट किस लिए? मैंने तो तुम्हारे रूप की एक झलक भर देखी है, हृदय नहीं भरा। अच्छा तो मैं ही इस चंद्रमुख पर से इन घूंघट रूपी बादलों को हटाए देता हूँ। ऐसे
1: ना,
0: अब ठीक है। देख रहा हूँ रूप का सागर, विधाता के हाथों खड़ी हुई सौंदर्य की प्रतिमा, पवित्रता और कोमलता की प्रत्यक्ष देवी मीनाक्षी, सुहाग बिंदिया और शशि मुख मोती की नत, मानो साक्षात भगवती का ही पदार्पण हुआ है मेरे घर में। मेरा अपनापन, मेरा व्यक्तित्व जैसे तुम में विलीन होता जा रहा है। मैं नहीं हूं, मैं और तुम।
1: स्वामी, मेरे देवता।
0: सच?
1: मैं तुम्हारी पुजारी।
2: सभी प्रजाजनों को सूचित किया जाता है,
0: तुम सच मुगल बादशाह सुंदर हो,
2: नगर की राजकुमारी
0: चंद्रमुखी पागल चकोर।
2: अपनी विशाल सेना
0: जी चाहता है कि एक तक तुम्हें देखता ही रहूं।
2: नगर के राजा ने
1: स्वामी
2: हमारे महाराणा
1: से पागल पर
2: सहायता की
1: प्रार्थना
2: की है। महाराणा के
0: तुम कुछ कहती जाओ और मैं सुनता रहूं।
2: अनुसार
0: मेरी रानी, मैं तुम्हारे सौंदर्य सागर के यौवन रूपी भंवर में फंस गया
1: हूँ।
0: कमल के कोमल संपुट में बंद भंवर की तरह हैरान हूँ, मुक्त हूँ।
1: सुनिए आपने,
0: इधर
1: स्वामी।
0: प्रिय,
1: छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ।
0: प्रिय, मुझसे क्या अपराध हो गया है जो तुम इतनी प्रसन्न हो और अचानक दूर खड़ी हो गई?
1: स्वामी सुनिए नगाड़े की ध्वनि। राजपूत तो इसका मतलब अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए मैं पीछे हट गई।
0: ओह मेरी हाड़ी रानी, मेवाड़ भूमि वीरों से शून्य नहीं है, और फिर मेरे लिए तो राणा जी का विशेष दूत आएगा।
1: जानती हूँ, पर देश की आन पर मर मिटने वाले किसी की प्रतीक्षा नहीं किया करते।
0: प्रियतम,
1: मेरी प्रार्थना है कि आप किसी की प्रतीक्षा न करें और तुरंत अपने कर्तव्य का पालन करें।
0: प्रिय, जीवन में प्रेम का महत्व किसी भी वस्तु से कम नहीं, कम से कम इस मधु यामिनी को तो बीत जाने दो। विधाता भी कैसा क्रूर है, जीवन के इस मधुर हास्य में कठोरता का अट्ठास और संगीत की मधुर लहरी में ये भयानक चीत्कार जैसा क्षण मेरे ही भाग्य में था। तुम्हें जी भर कर निहार भी न सका, एक बार हृदय से लगा भी न सका। सेज पर सजी हुई गुलाब की पंखुड़ियां भी तुम्हारी प्रतीक्षा में मुरझा जाएंगी।
1: स्वामी ये केवल आपका मोह और वासना है।
0: रानी,
1: प्रेम प्रेरणा देता है, मोह विचलित करता है।
0: रानी,
1: स्वामी विचलित हो रहे हैं क्योंकि मोह ने प्रेम को बंदी बना रखा है।
0: हाँ रानी, मैं विचलित हो रहा हूँ। मैंने अब तक यौवन के उद्दाम वेग को केवल तलवार की धार पर ही रोक रखा था, पर तुम्हारे रूप और यौवन ने उस वेग को इतना तीव्र कर दिया है कि उसे रोकना असंभव सा हो रहा है। अपने प्राणों को अब तक मैं बर्छों और भालों की नोक पर ही उछालता फिरता था, पर आज जैसी घुटन और उलझन कभी ना हुई थी। क्या करूं?
1: तो ठीक है स्वामी, आप चूड़ियां पहनकर यहाँ बैठिए और मैं सैनिक वेश में युद्ध भूमि में जाती हूँ।
0: रानी ठहरो,
1: आप इस पुष्पशैया पर बैठकर अपनी घुटन का उपचार करिए, मैं आपकी इस कायरता के पाप का प्रायश्चित करने जाती
0: हूँ। ठहरो रानी,
1: यह हर अंश की तलवार है जिसने हर संकट में हमारी रक्षा की है, मैं जाती हूँ।
0: रानी ठहरो, रानी सुनो तो।
1: नहीं सामन, नहीं, मैं जीते जी अपने आप पर ये कलंक नहीं आने दूंगी कि जब सहस्त्रों युवक एक अबला की सतीत्व रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहे थे, उस समय सामंत रंग महल में रंगरेलियां मना रहा था। रूप और यौवन की आंधी में सामंत की वीरता एक तिनके की भांति उड़ गई। अपनी प्रियतमा के केश पुष्पों की सुगंध में मधोर सामंत तलवारों की खनखनाहट से

0: रानी शांत हो और जरा यहाँ बैठो।
1: छोड़िए मुझे, मैं ये तलवार लेकर आलमगीर की सेना पर टूट पड़ूंगी। एक राजपूत बालक के लिए मैं अपने प्राणों की बलि दे दूंगी। कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि सामंत की वीरता कायरता के बंदी खाने में बड़ी तड़प रही है।
0: नहीं नहीं नहीं, ठहरो रानी, तुम चली जाओगी तो मुझे विदा कौन करेगा?
1: तो फिर शीघ्रता कीजिए स्वामी, आइए मैं आपके बाल पर रख तिलक कर दूं। स्वामी विजयी हो और शीघ्र लौटे, यही मेरी शुभकामना है।
0: रण क्षेत्र में भी मैं तुम्हारी मनोहर छवि न भूल सकूंगा। तुम मेरी रग रग में समा गई हो। मैं तुम्हारे इस निर्दोष अछूते और अतृप्त यौवन को देख रहा हूँ। सोचता हूँ यदि मैं जीवित न लौटा
1: ना,
0: तो तुम्हारा ये रूप यौवन
1: ऐसा न कहिए प्रियतम। यदि कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो ये दासी स्वर्ग में आपके स्वागत के लिए पहले ही उपस्थित हो जाएगी। आप ऐसे विचार हृदय से निकाल दीजिए और निश्चिंत होकर रणभूमि में जाइए।
0: अच्छा प्रिय, विदा। जय भवानी।
1: जय भवानी। विजय प्राप्त कर शीघ्र आइए, मैं विजय मान लिए आपकी प्रतीक्षा करूंगी। भवानी आप

0: कितनी सुंदर है हाड़ी रानी, कितनी मस्ती और अलहड़पन है उसके अंग संचालन में। पात्र में भरी हुई मदिरा के समान इठलाता हुआ उसका यौवन, जैसे मदिरा की मादकता को भी चुनौती दे रहा हो। एक बार गले से भी न लगा सका, क्या करती होगी इस समय? कदाचित गुलाब की पंखड़ियों से सजी सेज पर बड़ी तड़प रही होगी। अगर मैं जीवित न लौटा तो उसका ये यौवन रूप, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को भेजना ठीक होगा, कुछ निशानी भी मांग लाएगा। रण सिंह उपयुक्त है इस कार्य के लिए, उसी को भेजता हूं।
1: रण सिंह का प्रणाम स्वीकार हो रानी जी।
2: कहिए रण सिंह जी, क्या समाचार लाए हैं?
1: महारानी, सामंत बड़े विफल हैं। उन्होंने मुझे आपके पास कुछ सेनानी लाने भेजा है, साथ ही ये संदेश भी दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर जौहर व्रत करने से आप ना हिचके।
2: ओ, अभी तक प्रियतम का मोह नहीं टूटा। एक क्षत्रानी अपनी मान मर्यादा की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लीजिए, ये मेरे पितृ कुल की तलवार है। निशानी के रूप में उन्हें ये तलवार देकर कहिएगा कि दोनों वंशों की लाज अब उनके हाथ है।
1: जो आज्ञा।
2: तारा, आज 3 दिन हुए, युद्धस्थल का कोई समाचार नहीं मिला।
3: वह रानी जी, जब रणसिंह आते हैं तब आप क्रोधित उठती हैं, और जब युद्ध का कोई समाचार नहीं मिलता तब व्याकुल होकर रोने लगती हैं।
2: तारा, तारा देख तो कोई आ रहा है।
3: रणसिंह जी आए हैं।
1: रानी जी, रणसिंह का प्रणाम स्वीकार हो।
2: रणसिंह, युद्ध भूमि का क्या समाचार है?
1: महारानी जी, युद्ध किसी भी समय आरंभ हो सकता है। सामंत ने मुझे अंतिम बार आपसे कुछ सेनानी मांग लाने को कहा है। उनका शरीर रणभूमि में है पर मन आपके ही पास मंडरा रहा है।
2: रणसिंह, एक अबला के सतीत्व को संकट में देखकर भी सामंत मेरे ही बारे में सोच रही है? इस हाड़ जाम की पुतली के मोह में उनकी सारी एकाग्रता नष्ट हो रही है। उनकी इस मानसिक कायरता का कारण मैं हूँ, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा तो फिर यही ठीक है।

0: करण सिंह, प्रतीक्षा करो, मैं आज तुम्हें अंतिम निशानी दूंगी। ऐसी निशानी जो कभी भी किसी भी पत्नी ने अपने पति को न दी होगी। विजय मार। तारा, तारा।
1: आई आई रानी जी, आपने मुझे बुलाया।
0: हाँ तारा, मेरी प्यारी सखी, तूने मेरी बहुत सेवा की है ना, आज अंतिम बार मैं तेरी सहायता चाहती हूँ।
1: ये क्या कर रही है?
0: इधर आ, इधर आ, मेरी मांग में सिंदूर भर दे, मेरे केशों को सुगंधित पुष्पों से सजा दे, पैरों में बिछिया पहना और महावर लगा। जल्दी कर, जल्दी कर तारा।
1: रानी जी, रानी जी, मुझे छोड़कर मत जाओ।
0: पगली, रोती है, क्षत्रानी होकर रोती है। शिखा ताकत, रण सिंह मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ला ला सिंदूर ला। अरे तेरे हाथ कांप रहे हैं, ठीक से मांग तो भर दे। ऐसे दर्पण ला, दर्पण इधर ला। अरे अरे वाह, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। जब मेरा विवाह हुआ था तब सब कहते थे कि बहुत सुंदर लग रही हूँ, पर आज मैं कैसी लग रही हूँ ये तो तू ही बता सकती है। बता, बता ना। अरे रोती है। ला, ला तारा, मेरे विवाह का जोड़ा और मुझे पहना दे। सुन तारा, एक बार तूने ही कहा था ना कि सामंत की विजय माल का सबसे सुंदर पुष्प मैं हूँ। हाँ, आज वही पुष्प बनने में जा रही हूँ। स्वामी के जोड़े करवोलत वक्ष पर ये मेरा शीश रूपी पुष्प खूब खिलेगा, खूब खिलेगा। बस बस, अब बहुत विलंब हो रहा है। मुझे आपके चरण स्पर्श तो कर लेने दीजिए। बस अब समय नहीं है तारा, अब समय नहीं है। मेरा भग्न शीश रण सिंह को दे देना और कहना, कहना रानी ने यह विजय मान समझ के लिए दी है। विजय मान।

0: तुम रो क्यों रही हो?
1: रण सिंह जी, लीजिए, हाड़ी रानी ने सामन के लिए ये विजय माल भेजी है।
0: ये कैसी विजय माल है जो इस तरह थाली में ढांक कर लाई हो?
1: आप स्वयं देख लें और सामन तक शीघ्र पहुंचा दें।
0: ये क्या, ये रानी के शीश की विजय माल? धन्य हाड़ी रानी, तुम्हारा ये बलिदान युग युग तक भारत के नरनारियों को प्रेरणा देता रहेगा। जाता हूं तारा।
2: अभी तक रण सिंह नहीं आया और इधर आलमगीर अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ा रहा है। उसे रोकने का कोई उपाय नहीं सूझता। हाड़ी रानी नस नस में बस गई है, क्या करूं?
0: सामन, क्या मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो सकता हूं?
3: आओ आओ रण सिंह, मैं बड़ी उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कहो,

0: हरी रानी कुशल से तो है, मेरे लिए कुछ सेनानी दी उन्होंने।
1: हाँ सामंत, रानी जी ने आपके लिए ये विजय माल भेजी है।
0: अच्छा,
1: इसे गले में पहनकर आप झूम पड़ेंगे।
0: सच?
1: और जो भी इस अनोखी विजय माल को देखेगा वो अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। इस विजय माल के साथ ही हाड़ी रानी ने एक निवेदन भी किया है।
0: वो क्या?
1: कि इस युद्ध में हम सबका एक ही नारा हो और एक ही लक्ष्य हो, विजय या मृत्यु।
0: हमें सब स्वीकार है पर सेनानी तो दिखाओ।
1: आगे बढ़िए सामंत, और इस ढके हुए थाल को स्वयं खोलकर रानी की दी हुई इस निशानी से अपने वक्ष स्थल को सुशोभित कीजिए।
0: नरसिंह, नरसिंह जी क्या लाए हो? ये क्या किया तुमने नरसिंह?
1: मैंने नहीं, आपने ही ये किया। रानी के मोह में अंधे होकर आपने मुझे बार बार

0: आगे बढ़िए सामंत, और इस ढके हुए थाल को स्वयं खोलकर रानी की दी हुई इस निशानी से अपने वक्ष स्थल को सुशोभित कीजिए।
1: नरसिंह, नरसिंह ये क्या लाए हो? हमारी भाभी का भंग ऋषि, ये क्या किया तुमने नरसिंह?
0: मैंने नहीं, आपने ही ये किया। रानी के मोह में अंधे होकर आपने मुझे बार बार सेनानी लाने को भेजा। रानी आपकी दुविधा को पहचान गई और आप पर कोई कलंक न लगे।
1: मैं समझ गया, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं ही दोषी हूं। सचमुच मेरा पतन हो गया था, रानी ने मुझे बचा लिया।
2: हाड़ी रानी तुम साक्षात भवानी थी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। इन लहराते हुए सुंदर केशों की माला बनाकर मेरे गले में पहना दो रण से, मेरी प्रियतमा का शीश मेरी छाती पर लटकने दो। मेरे मृत शरीर को रानी के साथ एक ही चिता पर रखकर भस्म कर देना। अब मेरी आंखों पर से मोह का आवरण हट गया है। भूखे सिंह की तरह हम अपने शत्रुओं पर टूट पड़ेंगे। साथियों आगे बढ़ो,
3: विजय हमारी है।
1: मेरी प्रियतमा मेरी प्रतीक्षा में होगी।
0: मैं जाता हूं। सामन, आप कहां दौड़े जा रहे हैं? सामन ठहरिए, ठहरिए सामन।
4: रानी सुना तुमने, हम विजयी होकर आ गए, हम लौट कर आ गए। आओ हमारा स्वागत करो, टीका लगाओ, आरती उतारो, रानी शीघ्र आओ। तारा, ओ तारा।
5: जी सामंत।
4: रानी जी कहाँ हैं? उनसे कहो कि हम विजयी होकर आ गए हैं, विजय माल लेकर जल्दी आए।
5: सामंत, रानी जी की विजय माल तो आपके गले में पहले से ही सुशोभित है।
1: हाँ, रानी, मेरी हाड़ी रानी, मेरी विजय माल।

विजय माल। अभी आपने रवि शर्मा लिखित ये नाटक सुना। प्रस्तुतकर्ता बी डी माथुर।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक युवा अभिनेता हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि युवा अभिनेता, लेखक, गायक और संगीतकार देवेंद्र अहिरवार। बहुत स्वागत देवेंद्र।
3: बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
2: देवेंद्र, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी जो पहचान बनी है वो 120 बहादुर से बनी है।
3: जी जी।
2: ये फिल्म आपको कैसे मिली थी?
3: ये फिल्म के पहले एक बहुत लंबी कहानी है। इस पहचान तो ऐसे नहीं है कि इस फिल्म से बनी है, क्योंकि मैं लगातार थिएटर कर रहा था। लगभग 15-20 सालों से मैंने काम किया है। मैं काफी छोटा तब से काम कर रहा हूँ और एक ऐसे बोल सकते हैं कि एक बहुत एक बड़ी ऑडियंस को जानने का मौका मिला कि इस नाम का कोई बंदा है कुछ काम करता है। तो ये फिल्म मुझे जैसे सबको मिलती है, क्योंकि हम बाहर के लोग हैं तो ऑडिशन से ही मिलती है। सो मैं ऐसे म्यूजिक में हूँ, मेरा गाने गाने का काम है, या मैं एक्टिंग करता हूँ या नाटक बनाता हूँ। तो कास्टिंग डायरेक्टर जो अनमोल आहूजा है, उनको मालूम था कि मैं गाना गाता हूँ। तो एक कैरेक्टर था 120 बहादुर के लिए, ऑडिशन हुआ कि एक गाना गाने वाला लड़का चाहिए। तो उन्होंने मुझे ऑडिशन लिया, पर उस कैरेक्टर के लिए मैं बाद में फिट नहीं बैठा, मेरा लुक नहीं जा रहा था और मेरा काम, मेरा ऑडिशन अच्छा हुआ था। तो उनको लगा कि इसको हम फिल्म में इस वाले कैरेक्टर के लिए नहीं रख सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक दूसरे कैरेक्टर के लिए टेस्ट किया जिसका नाम था बैंगन। तो उस बैंगन कैरेक्टर के लिए फिर मैं फाइनल हुआ। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, खासकर बुंदेलखंड के पूरे एरिया ने, मध्य प्रदेश के पूरे एरिया ने और पूरे देश के लोगों ने फिर बहुत ज्यादा प्यार दिया और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ।
2: बिल्कुल, लेकिन आपकी यात्रा यहाँ से शुरू नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि सीधे चलते हैं बुंदेलखंड की तरफ। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका बचपन कैसा था और अपने माता पिता के बारे में बताइए।
3: जी जी। सो मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव का नाम है पहरा।
2: क्या बात।
3: सो मैं बहुत छोटा था तब मैंने एक रेडियो पे गाना सुना था कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, इश्क और भी गहरा हुआ है। तो मैं काफी छोटा था और मैं सोचता था मेरे गांव का नाम फिल्मों में आता है। मेरे गांव के नाम पे गाने बने हुए हैं। हाँ। तो तभी मैंने सोचा था कि मैं, बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो मैं फिल्मों में जाऊंगा।
2: अरे वाह।
3: मुझे पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, सच में ऐसा होने वाला है। तो एक ऐसी छोटी सी कहानी है। और मैं रेडियो लगातार सुनता था, विविध भारती लगातार सुनता था, छतरपुर आकाशवाणी मैं बहुत सुनता था, हेलो फरमाइश में सुनता था, रेडियो मेरे साथ ही रहता था, मेरा दोस्त हुआ करता था एक तरीके से, क्योंकि मेरे पापा भी गाना गाते थे तो उनको भी शौक था। देशर पटरिया के गाना, उर्मिला पांडे जी के गाने और भी बहुत सारे लोगों के गाने मैं सुनता था। तो ऐसा एक जीवन बीता और मेरे घर के बाहर एक चबूतरा था। चबूतरे पे शाम को लोग अपने खेतों पे खाना खाने के पहले, डिनर करने के पहले वहां पे बैठते थे और फिर वो वहां पे कुछ गाने गाते थे 1-2 घंटे और फिर अपने खेतों पे जाते थे सोने के लिए कि जानवर उनके खेतों में ना घुस पाए। सो पूरा किसान परिवार, एक छोटी सी बस्ती में आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। सो उन लोगों में मैं और मेरा भाई लखन भी, दो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे जो बैठे थे और कई दफा लोग हमसे इरिटेट भी होते थे कि बच्चे बहुत ज्यादा बैठते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि मंडली ने सोचा कि इस मंडली को थोड़ा बड़ा करते हैं। तो उस समय ऐसा होता था कि कोई गलत करता था तो उससे वो लगाते थे, जुर्माना लगाते थे।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो ऐसा करके होता, तो किसी ने कुछ गलत किया होगा तो उन्होंने कुछ पैसा दिए, 8-10 हजार रुपए उधर से आए। तो उन्होंने सोचा इस पैसे का क्या करें। हाँ। तो उन्होंने सोचा अब हारमोनियम ले लेते हैं।
2: अरे वाह वाह।
3: तो उन्होंने हारमोनियम ले लिया, पर हारमोनियम बजाना तो किसी को नहीं आता था। तो अब बड़ा असमंजस हो गया। तो रात को बैठते थे पर हारमोनियम रहता था, बजा तो कोई नहीं था। तो फिर वो हमारा घर जस्ट बगल में था तो हमारे घर में रखते थे हारमोनियम। तो मैं और मेरा भाई

0: स्कूल से आके हम दो दो तीन तीन घंटे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। वो ढोलक बजाता था, मैं हारमोनियम बजाता था, और ऐसे बजाते बजाते बजाते बजाते सडनली थोड़ा थोड़ा गाने के आसपास में दिखने लग गया लोगों को कि
1: अरे
0: गाने के
1: वाह।
0: आसपास से, गाने के आसपास है, कोई भी गाना गाता है तो उसके आसपास ही बजा लेता है। तो ऐसे करके मैं उस पहला जो मेरा ग्रुप था, जो मेरा पहला परफॉर्मेंस था, वो गांव के जो फोक आर्टिस्ट हैं, जो मंडली है, जिनमें मेरे
1: अपने घर के
0: पिताजी
1: ही
0: भी थे,
1: चबूतरे में हुआ।
0: चबूतरे पे ही मैंने उसको एकदम से ऐसे शुरू किया और फिर स्कूल में गाने गाने शुरू किए।
1: वाह वाह।
0: मैं ये बोलूंगा कि मेरे पिताजी भी किसान हैं, मेरी माँ भी किसान है, और मैं बहुत ही प्राउडली ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। जिस तरह से हम प्राउडली बोल पाते हैं ना कि हम फौजी खानदान से हैं, ऐसे जय
1: हाँ
0: जवान जय किसान वाले जो पूरी बात है, अगर हम उन साथ में बोले तो हम बहुत सारे लोगों को एक क्राइसिस रहता है कि बोलने में कि हम किसान परिवार से, तब मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं किसान परिवार का एक लड़का हूँ।
1: कितने दूर है छतरपुर से ये गांव?
0: छतरपुर से 24 किलोमीटर दूर है ये, बसारी पन्ना रोड पे पड़ता है, तो बसारी
1: अच्छा,
0: के आगे है पहरा।
1: ओके। तो
0: बहुत ही छोटा सा गांव है सर, बहुत ही।
1: कितनी क्लास तक वहां पढ़े आप?
0: मैं वहां पे पढ़ा 8वीं क्लास तक, उसके बाद मैं 12वीं तक पढ़ा बसारी में। बसारी में पढ़ते हुए एक फिल्म आई थी उस समय जिसका नाम था जीजाओ रे, बुंदेली फिल्म थी।
1: हाँ
0: उसमें एक एक्टर थे हिमालय यादव, जो उसी गांव के थे, तो वो लाइक वो बहुत पॉपुलर हो गए थे उस फिल्म से। उस फिल्म को बहुत प्यार मिला, हर घर में सीडी हुआ करती थी उस समय तक,
1: अरे वाह।
0: जीजाओरी की सीडी, झूमो नाचो गाओ रे, खुशियां मनाओ रे, पता नहीं आओ रे भैया जीजाओ रे, ऐसा कुछ गाना था उसका,
1: क्या
0: टाइटल
1: बात है।
0: सॉन्ग था
1: अच्छा,
0: उसका।
1: जब ये सब बातें हो रही हैं तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो जो चबूतरे पर गाने होते थे उसमें से कोई गाना याद है,
0: उस पे
1: लोकगीत?
0: ऐसे कुछ कुछ भी गम्मतें होती थी, गाने होते थे, लाइक फागे होती थी,
1: हाँ
0: तो उसी तरह से कि कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहाँ ले आए ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, उपटा लगत उंगरिया मेरे, कहाँ ले आए
1: उपटा लगत उंगरिया,
0: उंगरिया,
1: क्या
0: मतलब
1: बात
0: ना
1: है।
0: कहाँ ले आए राजा के पहाड़िया
1: क्योंकि
0: में,
1: मतलब
0: लाइक
1: बुंदेलखंड।
0: कोई लव मैरिज करके किसी को डिफिकल्ट शहर में ले जाए, ये गाना मतलब इनडायरेक्ट रूप से वैसा है, ये
1: हाँ
0: पहाड़िया को।

0: देखा ले आए। सो वही है, लाइक मैं किसी लड़की को प्रॉमिस करूं कि मैं तो बंबई रहता हूं और फिर मैं वहां छोटे से कमरे में रख दूं, तो उसी सिचुएशन को एक अलग तरीके से कवि बुंदेली बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जो
1: हाँ
0: लोग कवि हैं, लोग गायक हैं, वो कैसे उसको कैप्चर करते हैं और कैसे उसको करते हैं,
1: तो
0: तो
1: मजा आ गया मुझे सुन
0: बहुत ही मजा आ गया, वो तो
1: के
0: बहुत मजा। तो
1: तो।
0: यही था फिर बुंदेली, फिर जब बसारी में पढ़ता था, हिमालय भैया से मिलना हुआ, हिमालय यादव जी से मिलना हुआ, उस समय बसारी में एक फेस्टिवल होने लग गया था, उसका नाम था बुंदेली उत्सव।
1: हाँ
0: तो बुंदेली उत्सव बहुत बड़ा फेस्टिवल होता, फरवरी में लगभग 1 महीना 21 दिन चलता था वो।
1: अच्छा
0: और उस समय तो क्योंकि जो वो कराते थे शंकर प्रताप सिंह बुंदेला जी, मुन्ना राजा जी कराते थे उसको, तो पूरे एमपी के फोक आर्टिस्ट सेलिब्रिटी आते थे उधर। तो वो पहली बार मैंने एक नाटक किया उस ग्रुप में जुड़ के, हिमालय भैया के ग्रुप में जुड़ के, और नाटक का नाम था ददुआ भाव दिल्ली में बर्बाद।
1: अरे
0: और मैं
1: बाबा
0: नाइन्थ
1: रे,
0: क्लास में पढ़ता था उस समय।
1: ठीक है।
0: उस नाटक में मैं रेल का डिब्बा बना था, हम छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे हमारे,
1: हाँ
0: छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे,
1: तो
0: लाइक
1: बुंदेली में था ये।
0: हाँ बुंदेली में नाटक था। अब मुझे कोई भी डायलॉग याद नहीं है क्योंकि मैं एक तो पहला नाटक था मेरा, तो उस ग्रुप से जुड़ गया और फिर मुझे बहुत मजा आया। और मैंने अभी आपसे बात भी किया इस तरह का, जो मुझे वो सर्कल में बैठते थे लोग, एक दूसरे की आंखों में बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, उस तरह का एक भाव मुझे लगता था। तो मुझे पता चला कि मैं शायद इस फील्ड में ही जाना चाहता हूं।
1: वाह।
0: तो फिर ऐसे शुरू हुआ सर, मैं जल्दी से इसको वो कर लेता हूँ। फिर खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, हमारे घर के पास ही है खजुराहो, 30 किलोमीटर दूर ही है। सो खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी की एक वर्कशॉप थी, और उसको डायरेक्ट करने आए थे इश्तियाक आरिफ खान, जो कि काफी
1: ओ,
0: बड़े
1: वो तो
0: एक्टर हैं,
1: पन्ना के ही
0: जो
1: है।
0: पन्ना के ही हैं। तो
1: हाँ
0: वो एनएसडी से पास होने के बाद वो वर्कशॉप के लिए आए थे, हमको पूछा गया कि खजुराहो में वर्कशॉप हो रही है। तो खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई खजुराहो, अंग्रेज आते हैं, गोरे, 5 स्टार होटल, तो हमें उधर पहुंचना है कुछ भी करके। तो घर में बोला कि एक वर्कशॉप हो रही है, तो उन्होंने बोला क्या क्या चाहिए पड़ेगा, तो हमने बोला कि उन्होंने बोला 2-2 किलो चावल लेके चलना है, 1 किलो दाल लेके चल रही है, थोड़ा नमक लेके चलते हैं, हल्दी मिर्ची लेके चलनी है, क्योंकि वहां पे 1 महीने रहना है।
1: हाँ
0: तो शिल्पग्राम में एक वर्कशॉप हो रही थी और उसमें हमने काम किया, और वो एक नाटक उन्होंने कराया इश्तियाक जी ने, इन्हें कहीं देखा है,
1: अरे
0: इन्हें
1: वाह,
0: कहीं देखा है। तो एक ऐसे कैरेक्टर जिनको हमने कहीं ना कहीं देखा है, उसका नाटक उन्होंने बनाया था, और वो नाटक बहुत अच्छा बना।

0: और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि इतने छोटे से हैं, वो क्यूट से हैं, और उन्होंने इतने 20-25 लोगों को, पूरे देश के लोगों को एक नाटक में पिरो दिया और इतना अच्छा काम निकल के आया।
1: इश्तियाक भाई की एक खासियत और है कि वो बहुत म्यूजिकल आदमी है।
0: हाँ, और म्यूजिकल प्ले था वो, और म्यूजिक में मेरा रुझान भी था, तो वो भी मेरे से काफी खुश थे। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी हो जाए, उनसे पूछा कि सर आपने मुझे ये करना है या मैं कहाँ सीखूं, तो उन्होंने बोला था कि मैं एनएसडी से पढ़ा हुआ हूँ, तुम भी एनएसडी जाओ अगर तुम्हें करना है। तो फिर मैंने तब लिख लिया था डायरी में कि मुझे कुछ भी करके एनएसडी पहुंचना है।
2: हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती,
3: भारत का गम एक्सपर्ट।
4: दररोज सकाळी 8 ते 8:30 या वेळेत जरूर ऐका लोकमान्य मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड प्रस्तुत मराठी भक्ती संगीत। प्रायोजक लोकमान्य मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, आपले विश्वासू लोकमान्य।
5: आणि लग्न बसण्याची खरेदी सणोत्सवासह फक्त स्वामींनी मध्ये बिझलाइन बिल्डिंग कुंठेकर रोड पुणे।
6: पहचान लिया रे अपना तुझे मान लिया रे।
0: फिर म्यूजिक आता जो आप कह रहे थे ना, ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए,
1: क्या बात है।
0: तो ये कुछ गाने जो ऐसे उस समय के याद है मुझे,
1: बिल्कुल वो एक जहन में बसे होते हैं और ये उस दौर की याद लेके।
0: जी जी जी, हमने बहुत देखा है फिल्म को।
1: वाह,
0: बहुत देखा है फिल्म को हम। मैं तो करण अर्जुन बहुत देखी, ये देखा, पता नहीं मिथुन की फिल्में देखी, टड़ी पार जैसी फिल्में देखी, सीडी जो भी मिलता था देखते, सर जो भी मिलता था देखते, वो हमारे लिए बेस्ट फिल्म होती थी।
1: वाह, ये गाना सुनते हैं।

0: देवेंद्र, आपसे बातें हो रही हैं और हम तकरीबन 90s के जमाने में हैं और ये वो दौर है जब आप एक नाटक करते हैं बुंदेलखंड फेस्टिवल में और फिर इश्तियाक आरिफ खान साहब से आपका परिचय होता है जो तब तक एनएसडी में हैं और तब तक बंबई आके उन्होंने अपने जलवे नहीं दिखाए और वो एक शिविर लगाते हैं और वहां से आपको एक राह दिखती है।
1: जी जी।
0: एक लड़का जो पहरा गांव का है और जिसको बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा जिसका परिचय नहीं है उसका परिचय इन सब चीजों से होता है और वो अपनी डायरी में लिख लेता है कि मुझे कैसे भी करके
1: यहां पहुंचना है।
0: उसके आगे क्या?

0: होता है।
1: उसके आगे मैं फिर स्कूल के बाद कॉलेज में पहुंचता हूं, तो अब मुझे तो कोई कोई लोग चाहिए कि भाई ये काम करने वाले लोग कहाँ हैं, अभी मुझे 3-4 साल और पढ़ना पड़ेगा है ना, तब जाके मैं वहां पे जाऊंगा। क्योंकि मैं वर्कशॉप के निकलने के बाद मैं दिल्ली आया घूमने के लिए, कि मुझे पहले वो जगह देखनी है जहां मुझे पढ़ना है।
0: तो मंडी हाउस चले गए।
1: मैं पहले किसी दोस्त के साथ जो किसी बस्ती में रहता था, मजदूर फैमिली का, मजदूरी करने जाते थे उनके पिता जी, तो मैं उस दोस्त के साथ दिल्ली आया, और दिल्ली में ढूंढते ढांढते उस बच्चे के साथ में, और मैं खुद बच्चा हूं अभी, मैं 9th 10th क्लास में पढ़ता हूं, और मैं एनएसडी की तरफ बढ़ते बढ़ते मैं वहां पहुंचा। उस समय मेट्रो बन रही थी, और मैंने पहली बार देखा कि वो ऐसी सीढ़ी है जिससे पैर रखते अपने आप ऊपर पहुंचा देती है। मेरे लिए बड़ा चमत्कार था। मैं घर जाके लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ऐसी सीढ़ी बन चुकी है धरती पे, आपको चढ़ना नहीं पड़ता, आप अपने आप ऊपर पहुंच जाओगे। और मैं ऐसे हो गया, फिर मैं एनएसडी के गेट पे पहुंचा, और मैं एनएसडी मैंने देखा कि ये लिखा है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, मतलब ये वो जगह है। और मैंने वहां से निकलते हुए लड़के लड़कियों को देखा, और वो बहुत ही फ्रेंडली हैं, किसी ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई डायलॉग पहन रहा है, कोई कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है, और मैं देखा कि भाई ये तो अलग दुनिया है, ये तो कमाल की दुनिया है। तो मैं गेट में घुसने को हुआ, तो एक उस समय एक गार्ड हुआ करते थे, उनका नाम था धुरंधर जी, रिटायर्ड फौजी थे वो
0: जी।
1: तो मैं घुसने लगा, उन्होंने बोला क्या हुआ, मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पढ़ना है। बोले कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मैंने कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। कह रहे यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कह रही अब तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा यार। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, तो उन्होंने बोला कह रहे ऐसे बहुत लोग आते हैं बोलने के लिए, पहले अभी 10 क्लास में पढ़ता है, अभी तू ग्रेजुएशन करेगा फिर तेरा मन बदल जाएगा, पता चला कुछ हो जाएगा, तू नौकरी लग जाएगी तो तू नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं नहीं सर मैं आऊंगा, मैंने बोला कि मैं आऊंगा, मुझे आना ही है इधर। तो मेरे पास उस समय नोकिया 2626 फोन हुआ करता था,
0: वो छोटा वाला
1: फोन, तो उसमें 1 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी।
0: हाँ।
1: तो मैंने उनसे बोला कि मुझे क्या क्या करके आना है,
0: बस रिकॉर्ड कर दो,
1: इसमें रिकॉर्ड कर दो, एक मिनट ही मेरे पास में, इससे ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास में।
0: हाँ।
1: तो उन्होंने मुझे बताया कि 6 नाटक चाहिए जिसमें तूने एक्टिंग की हो या बैकस्टेज किया हो, 3 बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया होना चाहिए, जिनके लेटर्स लिखा होगे, जिनमें लिखा होगा कि वो तुमको जानते हैं, तुमने उनके साथ काम किया है, और वो तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं।
0: अरे गजब,
1: तुम अनुशासित हो,
0: 1 मिनट में सब
1: बता दिया, ये करके आना पड़ेगा, तब तुम फॉर्म डाल सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग लेके, मैं रोज सुनता था मुझे ये करना है। मैं वापस आया, मैंने अपनी पढ़ाई की, कॉलेज गया, फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे कोई नाटक ही नहीं करता उस तरह से, तो मैं ही नाटक करूंगा।
0: तो
1: मैं
0: कॉलेज में, शहर में था
1: ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराजा कॉलेज, तो वहां पे मैंने ये ग्रुप बना दिया और छोटे मोटे नाटक करने लगा, यूथ फेस्टिवल में नाटक करने लगा, और पता चला कि छतरपुर में कोई इफ्ता नाम का एक संस्था है जो एक्टिव है, जो उस समय शिविन शुक्ला जी चला रहे थे, अभी भी वही संभालते हैं उसको, तो उनसे जुड़ गया। फिर उनने जो भी नाटक कराया उनमें नाटक करने लग गए, बकरी नाटक किया, सर्वेश्वर सक्सेना का नाटक किया, और भी नाटक जो भी वो कराते थे उससे जुड़ गए, और वो रिकॉर्डिंग सुनता रहता था कि ये तो करना ही भाई, अभी एक नाटक हुआ वो नाटक हुआ। फिर ये भी सोचता था कि जिस लेवल के हम नाटक कर रहे हैं, इस लेवल के नाटक के उसमें काउंट होंगे, हम तो कुछ भी कर देते हैं,
0: बिल्कुल
1: कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कहीं बोल दिया ये इम्प्रोवाइज करके कर दिया, बुंदेली में कुछ भी बोल दिया कर दिया। तो फिर सोचा ग्रेजुएशन के दौरान कि भाई ऐसे चलेगा नहीं, भोपाल निकलना पड़ेगा।

0: दररोज सकाळी 8:30 ते 9 या वेळेत जरूर ऐका कॉस्मॉस कोऑपरेटिव्ह बँक गदिमांजली. या कार्यक्रमाचे प्रायोजक कॉस्मॉस कोऑपरेटिव्ह बँक. जीवन करा समृद्ध.
1: दररोज 9:30 ते 9:30 या वेळेत जरूर ऐका एस हॉस्पिटल लाखात अशी लेखणी. या कार्यक्रमाचे प्रायोजक एस हॉस्पिटल. किडनी तुमची, काळजी आमची.
2: और मैं एक डायरेक्टर है अलखनंदन सिन्हा जी, मैं अलख दादा से उनसे मिलवा दूंगा. पर वो तुम्हें रखेंगे नहीं रखेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है. तो फिर मैंने एक समय ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद मैं एमए के लिए मैंने अप्लाई किया था और मैं भोपाल की बस में बैठ गया रात को. शादियों का सीजन था, बहुत बहुत ढोल बज रहे थे, बस निकल नहीं पा रही थी शहर से. और मैं बस में बैठा हूं और मेरे घुटने कांप रहे हैं और मैं सोच रहा हूं कि मैं एक बंदे का नंबर है सिर्फ मेरा, उसकी शक्ल भी नहीं देखी और वो किस तरह के होंगे, किस तरह का व्यवहार होगा उनको, और मैं उस शहर में किसी को जानता नहीं हूं और मैं वैसे ही जा रहा हूं. मेरे घुटने कांप रहे हैं और बारात की वजह से बस धीरे धीरे चल रही है. मैं सोच रहा हूं कहीं ये भगवान का संकेत तो नहीं है कि अभी मौका उतर ले, है ना. और मैं फिर बस से नहीं उतरा और मैं पहुंच गया उधर 5 बजे मॉर्निंग में. और मैं 5 बजे से उनको फोन कर रहा हूं. अभी 5 बजे कोई कोई फोन उठाएगा?
3: बिल्कुल.
2: वो तो उठे, जब उठे 10 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया. उन्होंने बोला कि वो रोशनपुरा चौराहे पे 12 बजे मिलेंगे. मैंने कहा 12 बजे तक मैं क्या करूंगा. मैं जाके कहीं मैंने कुछ पोहा हुआ खाया, नाश्ता वास्ता किया और मैं डिवाइडर पे खड़ा हुआ 2 घंटे के लिए. मैंने कहा, मैं उनको बोल दिया कि मैं बीच डिवाइडर पे खड़ा रहूंगा भैया, ऐसा ना हो कि मेरा फोन बंद हो जाए या आपका फोन कुछ बंद हो जाए, मैं रिस्क नहीं ले सकता. तो मैं डिवाइडर पे खड़ा रहा और फिर एक बंदा
3: रोशनपुरा चौराहे,
2: हाँ, एक बंदा शरीफ सा बंदा, एक हाथ में झोला लेके एक बंदा मेरे पास आए और

0: मैं उनको देखा मैंने कि मेरे को भगवान आ गए मेरे लिए, ये मेरे को रास्ता दिलाएंगे, ये पहला इंसान है जो मुझे कहीं पहुंचाएगा। और वो मुझे मिले, मैंने उनको देखा और मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने बोले कि पैर वैर नहीं छूते। मैंने बोले हमारे यहाँ तो पैर बड़ों के पैर छूते हैं। उन्होंने बोले नहीं नहीं पैर नहीं छूते क्योंकि लोग अजीब के होते हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया और कट्टू फिर वो मुझे एक डायरेक्टर के घर में ले गए, अलग दादा के घर में, और हम बैठे हुए हैं और एक घंटा हो गया।
1: पहले हेमंत आया,
0: हेमंत दादा आए पहले। अच्छा। उन्होंने बोला कि मेरा तो कोई ग्रुप नहीं है भाई, मैं किसी ग्रुप में काम करता हूँ, मैं डायरेक्टर को मिलवा दूंगा। और क्योंकि वो उनका ग्रुप का नाम नटबुंदी ले हो, तुम बुंदेलखंड से हो तो हो सकता है तुम्हें रख ले।
1: हाँ।
0: और तुमने बोला तुम गाने आने गाते हो तो हो सकता है तुम्हें म्यूजिक बंदों को रख ले। और मैं अतरंगी था सर, बेल बॉटम पैंट पहना हुआ है, लाल पीली कलर की शर्ट पहनी हुई है, बाल मेरे तेरे नाम जैसे हैं, बड़े बड़े मैंने बाल रखे हुए थे। तो मैं वहां पहुंचा, लगता कि उधर रहते थे प्रोफेसर कॉलोनी में, तो उनके घर के बाहर हम बैठे हुए हैं। एक घंटा हो गया, दो घंटा हो गया बैठे बैठे, पानी आया चाय आई हम पी के बैठे हुए हैं। और मैं पूछूं कि क्या हुआ, तो बोले कि दादा कुछ पढ़ रहे हैं। और मैं सोचूं कि ऐसी क्या पढ़ाई है कि लोग घर में आके बैठे हैं, बंदा पढ़ ही रहा है, आ ही नहीं रहा है। फिर मुझे पता चला कि लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं कि अपना पूरा काम करके आएंगे वो, उन्हें बैठना है तो बैठो। फिर अलग दादा एक आए, अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी आया और उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि कौन है ये। उन्होंने बोला किसको लेके आ गए, कौन है, मेरी शक्ल देख के। अरे मैंने कहा सर मैं देवेंद्र हिरवार, और मैंने बहुत नाटक किए हैं छतरपुर में, मेरा बहुत नाम है, मेरे कॉलेज में पूरे लोग जानते हैं।
1: हाँ।
0: आपके ग्रुप को मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा सर। मैं बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे को, ये ताकत लगा रहा था क्योंकि मैं डरा हुआ भी था, तो मुझे और ताकत लगा, मरता हुआ आदमी और हाथ पे चलाता है, तो मैं हाथ पे चला रहा था। उन्होंने बोला भाई इससे हो ही नहीं पाएगा, उनको देखे इसको भगाओ, इससे हो नहीं पाएगा। तो मैंने बोला सर ये ऑप्शन ही नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता, मुझे कहीं आना है और मैं उसके लिए आया हूँ, मैं जा ही नहीं सकता, लौट नहीं सकता मैं। तो फिर उन्होंने मेरी जिद देखी, उन्होंने बोला कि यार ये लड़का पता नहीं। उन्होंने बोला कि देखो ऐसे लड़के जो घर से पैसे मांगते हैं उनको हम अपने ग्रुप में रखते नहीं है, और हम अपने ग्रुप में तुरंत जुड़े हुए नए बंदे को पैसे देते भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे। मैं सर कुछ भी करूंगा, मैं आप मुझे बोलो मैं कुछ भी करूंगा, आपकी रिहर्सल स्पेस साफ कर दूंगा, आपको कुछ भी कर दूंगा मैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो हम तुमको रहने के लिए बस व्यवस्था कर सकते हैं, आपको बाकी चीजें आप खुद से देखनी पड़ेंगी। तो जिस रिपेटरी कंपनी में उनका सामान रहता था, हाथा एक जगह थी श्यामला हिल्स पे, उसमें मैं हेमंत देवलेकर भैया और एक और जितेंद्र भाई एक थे जो कि पत्रकार थे वो रहते थे। तो ये लोगों के साथ रहना हुआ मेरा पहली बार, और ये पढ़ने लिखने वाले लोग थे, भोपाल के साहित्य के लोग आते थे उस कमरे में, वहां पे एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी, और उनके साथ रहना, कविताएं सुनना, हेमंत भैया को सुनना। और फिर मैं हिम्मत करके मैंने बोला कि भैया एक बार मैंने बोला कि मैं भी लिखता हूं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा अच्छा तो एक महफिल थी, मैंने हिम्मत करके बोल दिया, उन्होंने बोला कि क्या क्या लिखा, तो तुम चाहो तो पढ़ सकते हो देवेंद्र, क्योंकि बहुत ही प्यारे काइंड थे और मुझे लगा कि सच में वो मेरे लिए भगवान जैसे ही हैं, अभी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तब मैंने एक बुंदेली कविता लिखी थी जो कि मेरी एक तरीके से पहली कविता थी, और मैंने उनको फिर सुनाई उस महफिल में, सुनाई पहली बार। मैं इधर सुना दूं आपको?
1: जरूर।
0: तो कविता बुंदेली में ही है कि दद्दा मोखा मेला जाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने, ऊंचे ऊंचे गड़े हिड़ोरा बिचरी खूब बराई, और मेला में मिल जे है दद्दा मोखा मम्मा माई, वो पुत्रा और पुतनिया हल्के कक्का से लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने। घूमत घूमत जो दद्दा मोखा मौसी मिल जे है, कईया लेके बड़े प्यार से हल्के मुन्ना के है, मोखा अपने मौसिया से गुब्बारा लिबवाने,
1: वाह वाह
0: मोखा अपने मौसिया से गुब्बारा लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने।
1: क्या बात है।
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, ये उसके दोस्त हैं।
1: बिल्कुल।
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, जिनके संगे बड़ी रहान में खेलो गिल्ली डंडा, जो मेलाना जा पाहो उनखा आके तिनगाने,
1: वाह वाह
0: आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने।
1: वाह वाह।
0: आखिरी बंद है कि दद्दा धीरे से मुस्काए, ढीले दोई बेला, और नए तंगड़िया बंठन के गए दोई घूमबे मेला, फिर मेला में फिर दद्दा ने गड़गड़िया ले बुआई, और कंधे पे बैठा के पूरा मेला दो घुमाई, कहते हैं देवेंद्र जे बचपन हमें भूल नहीं पाने, और आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने,
1: कहते हैं देवेंद्र।
0: उस समय ये बुंदेलखंडी कभी गानों में कभी जो राइटर होता था उसका नाम छाप बोलते थे उसे, छाप है। तो छाप लगा के ही मैंने पहली कविता लिखी थी, मेरी बुंदेली कविता थी, और वहां से ही मेरा साहित्य के बारे में शेक्सपियर पढ़ना शुरू किया, ब्रेक्ट पढ़ना शुरू किया, चेखव पढ़ना शुरू किया, मोहन राकेश पढ़ना शुरू किया, गिरीश कर्नाड पढ़ना शुरू किया, विजय तेंदुलकर पढ़ना शुरू किया, बादल सरकार पढ़ना, तो वो साहित्य से जुड़ना शुरू हुआ।
1: उस समय खर्च निकालने के लिए क्या करते थे आप?
0: खर्च तो मेरा कुछ था ही नहीं, मैं तो आटा तो मैं घर से ले गया था, और 10 रुपए का 5 रुपए का नमकीन का

0: पैकेट आता है भुजिया बोले ली, और रोटी बना के, और रोटी में घी लगा के, घी और ये दोनों चीजें घर से ले गया था, और रोल बना के उसमें नमकीन डाल देता और उसको ऐसे खाता था, खर्च कुछ था ही नहीं,
1: बस वहां ये खाना
0: से
1: हो गया।
0: खाना हो गया। और वहां से रिहर्सल के लिए वॉक करता था, तो वॉक करके वहां पे जाता था, रिहर्सल करता था, टाइम से पहले पहुंचता था, तो रिहर्सल स्पेस साफ करता था, ये ड्यूटी थी मेरी, रिहर्सल स्पेस साफ करना है, चटाइयां बिछानी है, डायरेक्टर की कुर्सी लगानी है, पानी की बोतलें भरनी है। तो मैं और मेरे दो दोस्त और थे, एक दर्शित जो अभी कास्टिंग करता है कास्टिंग में, मैं और एक मेरा दोस्त था सिद्धार्थ पांडे, जो कि मेरा पहला दोस्त बना, कि उस तरह से भोपाल का पहला बेस्ट फ्रेंड मेरा बना। और हम तीन लोग जाते थे, हम पहले पहुंचते थे, हम सब कुछ काम करते थे, डायरेक्टर आते थे बैठते थे, बड़े बड़े लोग एक्टिंग करते थे ग्रुप में, और मैं देखता था कि भाई ये तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, मेरी भाषा का बहुत खराब था, एक नाटक कर रहे थे तांबे के कीड़े, और दादा मुझे और मेरी भाषा बहुत खराब थी, तो उसमें थे एक पत्ती एक पत्थर एक शब्द, ऐसे कोई डायलॉग हुआ करते थे, वो भुवनेश्वर का नाटक था, एब्स्ट्रैक्ट नाटक था, और पहला नाटक ही मुझे वो करने को मिला। मैं कुछ ऐसे अजीब से नाटक करने के बाद अचानक से एक एब्स्ट्रैक्ट नाटक करने लग गया, तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हो गया। तो उसमें एक डायलॉग था, ले लो कांच के बीच, तो मैं बोलता ले लो कांच के बीच, तो बोलते ले लो नहीं, वो मुझे सिखाते थे ले लो नहीं ले लो, और मैं बोलता था ले लो, और मैं बोलता था कि मैं वही तो बोलता हूँ, और मुझे इस बात पे गाली मिलती थी, और वो बोलते थे तुम बुंदेली फोड़ रहे हो, मैं कहा यार ये मैं समझ नहीं आता, मैं वही तो बोलता हूँ। फिर मेरे दोस्त मुझे समझाते थे, मुझे पता चला कि मेरे को भाषा पे कितना काम करना पड़ेगा। सर मुझे अच्छे से याद है कि वो दादा के साथ काम करते करते ड्रामा स्कूल खुला भोपाल में, एक एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा, और मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तो मैं पैसे मैं कमा नहीं सकता, ग्रुप में पैसे मिलते नहीं, तो मुझे अब इस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा जहां पे साल में इतने सारे लोग आएंगे नाटक कराने के लिए, वो खुला ही था। तो मैंने फिर एमपी स्कूल ड्रामा के लिए एग्जाम दिया, पहला राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर वर्कशॉप में मैं गया, फिर वर्कशॉप में चल का एक माहौल। सो भोपाल में मैंने देखा कि एक नाटक कर रहे थे कि मैं कैसे मैंने म्यूजिक बनाना समझा, मैंने सीखा तो किसी नहीं है, मैंने हारमोनियम सीख लिया था, पर म्यूजिक बनाना मैंने कैसे समझा, कि एक नाटक कर रहे थे हम लोअर डेप्थ, त्रिपुराई शर्मा मैम जो कि हम उनको डायरेक्ट करने आई थी, जो कि हमारे बीच में नहीं है, पर मैम का बहुत बड़ा योगदान है मेरे को सब चीजों के लिए, काफी एनर्जी में भी जाने ले जाने में उनका बहुत योगदान है।
2: श्रोते हो दररोज सकाळी 9:30 जरूर ऐका कार्यक्रम पुन्हा ऐकेर मर्मबंधा तली ठेव ही। या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत पुन्हा ऐकेर मिशन हेल्दी आईज।
3: रोज सकाळी 11 ते 12 या वेळेत ऐकायला विसरू नका चंदूकाका सराफ ज्वेल्स मधुमालती, प्रायोजक चंदूकाका सराफ ज्वेल्स 1827 पासून, परंपरा तीच रूप नवे।
4: श्रोते हो रोज संध्याकाळी 7:15 जरूर ऐका कार्यक्रम ओंकार आयुर्वेद अमृत सरिता गीता। या कार्यक्रमाचे प्रायोजक डॉक्टर सत्यन गुजर यांचे ओंकार आयुर्वेद व्याधिमुक्त आनंदी जीवनासाठी।
0: ये छोटी सी बात है पर उन्होंने मेरे सामने कंपोज किया और मैं ऐसे इंस्पायर हो इनलाइट हो गया, मुझे लगा कि भाई ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो गाना ऐसा कुछ था।

0: क्यों रूठे किनारे। तो ये गाना मुझे लगा कि भाई ये तो इतना बढ़िया काम है। तो फिर मैं आया उधर से वर्कशॉप के बाद, मैंने कुछ दिनों में कुछ 4-5 गाने बनाने की कोशिश की और लिखने
1: क्या
0: भी शुरू
1: बात
0: किए,
1: है,
0: क्योंकि मैं पढ़ता था भावे लाइब्रेरी में पढ़ता था, बहुत सारे कवियों को मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैंने कुछ कुछ गाने लिखने शुरू किए।
1: कंपोज करना शुरू किया या लिखना शुरू
0: लिखने
1: किया?
0: भी लिखना लिखता तो मैं कविताएं था ही, पर मैंने कंपोज किए फिर 4-5 गाने। और फिर मैंने भोपाल में आके स्कूल के बाद मैंने बोला सर से कि सर मैं एक 5-6 गानों का, 7-8 मिनट का, 15-20 मिनट का एक शो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पर ये ऐसी परंपरा बनाओ कि हर सैटरडे को कोई एक बंदा परफॉर्म करेगा। तो मैंने कहा हाँ, तो सर उसकी शुरुआत मैं ही करता हूँ अगले।
1: रुको, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प दास्तान है। एक गाना सुनते हैं, उसके बाद ये दास्तान
0: हाँ,
1: सुनेंगे।
0: ओके चलेगा
1: तो
0: सर।
1: बताओ यहां कौन सा गाना होना चाहिए देवेंद्र?
0: ओ साथी रे,
1: क्या बात है,
0: ओमकारा का गाना,
1: ओमकारा का गाना
0: ओमकारा
1: है।
0: का गाना है
1: बहुत
0: कि बहुत ही
1: शानदार
0: सुंदर
1: गाना है,
0: गाना है, बहुत ही
1: बहुत
0: सुंदर
1: शानदार
0: गाना
1: गाना
0: है।
1: है।

0: ये गाना हमने ओंकारा फिल्म का सुना देवेंद्र, आप बता रहे थे कि हर शनिवार को ये परंपरा शुरू करो कि कोई परफॉर्म करेगा,
1: तो
0: इसके आगे क्या हुआ?
1: तो मैंने कुछ गाने बनाए और मैंने परफॉर्म किया, तो वो गाने परफॉर्म करने के बाद कुछ बुंदेलीवी गाने थे, कुछ ऐसे कुछ गाने थे, और वहां पे अगले नाटक को डायरेक्ट करने के लिए एक डायरेक्टर आए हुए थे, उनका नाम था वीके शर्मा। तो वीके सर ने मेरे को देखा परफॉर्म करते हुए, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने मेरे शो के बाद बोला कि अगला मेरा जो शो होने वाला है उसका म्यूजिक तुम करोगे। तो वो मेरा पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उस नाटक का नाम था अपना अपना भाग। हाँ, अपना अपना

0: आगे का मैंने पहला गाना है वो ऐसा कुछ गाना था, एक सुना देता हूँ ऐसे करके. सुबह का भूला जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है, सुबह का भूला जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है, फिर से जन्म हुआ है उसका फिर से मिला एक मौका है, फिर से जन्म हुआ है उसका फिर से मिला एक मौका है, मेहनत करके भाग्य जगा ले तुझको किसने रोका है, सुबह का भोला जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है. तो एक फेलियर आदमी की कहानी थी कि वो फेल हो गया था फिर वो कैसे हीरो बन के लौट के आया है, उसके ऊपर हमने ये नाटक, और ये पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उसके बाद तो ये लंबा सिलसिला है और फिर
1: म्यूजिक का सिलसिला चल
0: चालू हो गया. फिर उसके बाद मैं पास आउट हुआ और फिर वीके सर ने बोल दिया कि भाई तू पास आउट होके दिल्ली आ जाना मेरे ग्रुप में काम करना.
1: अच्छा,
0: तो एक ब्रिज में लिया कि मुझे दिल्ली जाने का मौका मिल गया क्योंकि मुझे दिल्ली ही पहुंचना है डेस्टिनेशन.
1: वो बोर्ड
0: वो तो छूटे नहीं है, वो रिकॉर्डिंग तो छूटी नहीं है.
1: हाँ.
0: वो तो मैं मुझे जाने थे स्कूल, उधर हुआ नहीं है. जिस समय मैंने एमपी स्कूल ड्रामा के लिए ऑडिशन किया था उस समय मैंने एनएसडी का भी ऑडिशन किया था.
1: अच्छा.
0: पर एमपी स्कूल ड्रामा मेरा हो गया और देने गया इंटरव्यू तो उन्होंने बोला कि भोपाल में खुद एक ड्रामा स्कूल खुला है, भोपाल में काम करते हो तो भोपाल में आपने नहीं दिया. मैंने बोला मैंने दिया था. तो उन्होंने क्या हुआ, मैंने कि हो गया. तो उन्होंने बोला पहले वहां पढ़ के आओ.
1: अरे
0: मैंने कहा अरे यार. तो फिर मुझे पढ़ने को वहां पे मौका मिला और फिर मैं जुलाई में पास आउट हुआ था. 4 अगस्त 2012 को मैं दिल्ली आ गया था वीके सर के ग्रुप में काम करने के लिए और फिर मेरे को 14 में मेरा सिलेक्शन हुआ.
1: ओके.
0: और तो उसके बाद मैं दिल्ली में लगातार काम किया, दिल्ली में काम किया.
1: 14 में एनएसडी में सिलेक्शन
0: हो गया
1: और वहीं वो
0: धुरंधर जी से मिलना हुआ मेरा.
1: मिले धुरंधर जी?
0: धुरंधर जी उस समय तक थे, धुरंधर जी पर वो मुझे भूल चुके थे तब तक.
1: हाँ हाँ.
0: मैंने बोला आपको याद है एक बच्चा आया था, आपने मुझे बोला था कि तेरा नहीं हो पाएगा. बोले यार ऐसे मनगढ़ंत कहानी सुना रहे. वो प्यार करते थे, वो थोड़ा सीनियर जैसे थे ना, जैसे बुजुर्ग कैसे होते हैं तो ऐसे थे वो. क्योंकि वो ऐसा कल्चरल ग्रुप है, एक्टिविटी है, तो वहां पे गार्ड गार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता जैसे दुनिया में होता है
1: जी.
0: तो वो ऐसे होता है कि अरे आप दादा हो, मतलब प्यार मिलता है, परिवार के सदस्य हैं, सीनियर सदस्य हो आप. तो उस तरह से तो धुरंधर जी से काफी लंबा समय तक उनसे प्यार रहा है और फिर वो रिटायर्ड हो गए तो अब मिलना कम होता है. पर मैं दुआ करता हूँ जहां भी हो, बहुत ही अच्छे थे वो.
1: एनएसडी ने आपकी दुनिया को कितना बदला?
0: सो एनएसडी में भी मैं एक्टिंग करने गया था. मैंने एक्टिंग करनी थी मुझे और मुझे शौक था एक्टिंग करने का. और मैंने पहला एक बड़ा नाटक मैं लीड रोल किया. उसके पहले तो क्योंकि मेरी भाषा बहुत खराब थी, एमपी स्कूल ड्रामा में मैं नाटकों में रोल करता था, एक नाटक में 6 रोल करता था. और मेरे डायलॉग किसके कैसे होते थे, छोटे छोटे रोल होते थे. बंदूक किसके पास है, मैं बोलता राजगुरु के पास, मेरा डायलॉग खत्म, मेरा रोल भी खत्म. मेरा रोल भी खत्म. मेरी भाषा इतनी खराब थी.
1: अच्छा.
0: क्योंकि
1: लेकिन ये फिर भाषा पर काम कैसे किया? ये बहुत
0: मैं बता रहा हूँ कि मैं ये कविता पढ़ते पढ़ते मैंने पहली बार शामिल बोलना शुरू किया था. शामिल बोलना शुरू किया पहले, क्योंकि मैं शामिल बोलता था, शेक्सपियर बोलता था.
1: हाँ.
0: तो लोग हंसते थे.
1: हाँ.
0: तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो मैं बहुत बड़ा मसला है.
1: हाँ हाँ.
0: तो मैंने भाषा पे काम किया, दोस्तों ने मुझे हेल्प की. हाँ. मुझे लगातार टोका, मुझे समझाया और फिर मैं कॉन्शियस हो गया उसको लेके.
1: हाँ हाँ हाँ.
0: मैं उसको लेके कॉन्शियस हो गया कि भाई अच्छा अच्छा मैं गलत बोलता था.
1: शक को सा बोल रहे हो,
0: हमेशा ही बोलता था. तो पहली बार मैंने ये कविता जो राजीव जोशी की बहुत पॉपुलर कविता है, बाद में मैंने उसको कंपोज भी किया.
1: हाँ.
0: जो हमारे बैंड का मंडी हाउस द बैंड, हमारा जो बैंड है उसमें गाना है ना.
1: हाँ.
0: जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे.
1: हाँ.
0: तो शामिल मैंने पहली बार शब्द बोला था जिसमें मैंने सा को सही बोला था.
1: हाँ.
0: शामिल बोला था. मेरे दोस्त चौंक गए थे कि भाई बोल दिया, यही तो बोल रहा था. इतने दिन से तुमसे यही तो बोलवाना चाह रहे थे हम.
1: ओके ओके.
0: तो ये पहली बार ऐसे भाषा पे काम किया. और जब मैं पहली बार इसमें एनएसजी आया और मैंने बहुत बड़ा रोल किया लोअर डेप नाटक में, दोबारा हुआ एनएसजी में, और उसमें मैंने साचिन का रोल किया और डायरेक्ट कर रहे थे अनुरोध खुटवर सर. और मैंने मेरा बड़ा नाम हुआ उस नाटक से क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई लड़का आया और 2-2.5 घंटे के नाटक में 1.5-2 घंटे कम से कम स्टेज पे और लगातार बोलना है और कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट, कुछ भी चीज मैं नहीं करता था सब उसको करना है. मैनेज्म पकड़ने की कोशिश की और लंबे अंतराल के बाद वो नाटक बहुत अच्छा हुआ. पर जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में गया और उस समय मुझे समझ आया कि यार मैं जहां से बिलोंग करता हूँ, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, जिन लोगों से मैं बिलोंग करता हूँ, अगर मैं एक्टिंग मैंने ले ली तो उनकी कहानियां कौन कहेगा. तो फिर मैंने वहां से अपना रुझान बदला और मैंने डिजाइन एंड डायरेक्शन में अपने आप को कोर्स लिया. सेकेंड ईयर से आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो वो लिया और फिर मैं उस तरफ आ गया. और फिर मैंने अपनी कहानियां लिखनी शुरू की, अपनी बात लिखनी शुरू की, जहां से मैं बिलोंग करता हूं उस जमीन की सच्चाई को लिखना शुरू किया, सोसाइटी पे क्वेश्चन करना शुरू किया. तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मैंने ठीक किया क्योंकि मैं अभी भी एक्टिंग तो मैं कर ही लेता हूं. मेरे को लोग प्यार करते हैं और मेरे को पता ही है कि मैं डायरेक्शन के हिसाब से जो मैं डायरेक्ट करता हूं, क्योंकि मुझे इतना प्रेशर नहीं रहता क्योंकि मैं डायरेक्ट करता हूं, तो मैं एक्टिंग भी बहुत सरल तरीके से करता हूं. लोग मेरी एक्टिंग की तारीफ भी कर देते इस बहाने कि भाई तुम लोड नहीं लेते,
1: बिल्कुल
0: तुम्हारी एफर्टलेस दिखती है.

0: तो ऐसे करके शुरू हुआ पूरा पूरा।
1: तो फिर दिल्ली में कौन से बड़े नाटक इस दौर के बाद किए आपने?
0: जब दिल्ली पहुंचा उस दौर के बड़े नाटक हुए थे, विरासत एक नाटक किया था अनुराधा कपूर मैम ने, बहुत बड़ा लेवल पे वो नाटक किया था जिसका बहुत नाम हुआ। उस समय बंसी दादा भी नाटक करते थे,
1: बंसी कॉल,
0: बंसी कॉल जी भी नाटक करते थे, एनएसडी में भी उनके साथ मैंने एक नाटक किया जिसका नाम था खेल मंडी खेल, उसका म्यूजिक मैंने बनाया।
1: मुखौटा।
0: हाँ, तो वो मूवमेंट थिएटर करते थे, लार्ज लाइव थिएटर करते थे, और वो फार्स कॉमेडी करते थे, वो कन्विक्शन के साथ कराते थे, वो बहुत बढ़िया काम था। तो उनके साथ भी काम करने का, त्रिपुराई शर्मा जी का नाम उस समय बहुत था, और बहुत उनके साथ नाटक किए हम लोगों ने, और बहुत नाटक देखे उनके, और बाहर भी दिल्ली के जो ग्रुप्स थे उनके साथ भी काफी नाटक देखे। एक नाटक देखा था मैंने, वाटर स्टेशन, जो कि साउथ का नाटक था, और उस समय भारंगम होते थे, तो भारंगम से भी बहुत सारे नाटक आते थे, दुनिया के सारे नाटक, बहुत सारे नाटक उस समय
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: देखे हमने। अभिलाष पिल्लई सर के नाटक देखे थे हमने, और बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत इंटरनेशनल लोगों से मिलना हुआ, पूरे देश के अलग अलग जगह के लोगों के, अलग अलग भाषाओं के लोगों से मिलना हुआ, और पावरफुल लड़कियों से मिलना हुआ जो कि अपनी बात बहुत स्ट्रांगली कह पाती हैं, और जो सोसाइटी में स्ट्रांगली अपनी प्रेजेंस को प्रूव करती हैं, और वो दिखाती हैं कि वो किसी से कम नहीं है, इंटेलेक्चुअली और क्रिएटिवली भी वो किसी से कम नहीं है। तो उन टीचर्स से ज्यादा हम बैचमेट्स से सीखते हैं। तो
1: वहां से
0: हमने,
1: फिर मुंबई कैसे आना हुआ?
0: मैं पास आउट हुआ 17 में, और फिर मेरे पास एक कॉल आया बहुत बड़े डायरेक्टर का, क्योंकि मैंने उस समय मेरा डिप्लोमा हुआ था, डिरेल मैंने किया था, वो नाटक उस साल का बहुत बड़ा नाटक बन गया, और वो थिएटर ओलंपिक हुआ, उसकी क्लोजिंग में हुआ, वो इतना बड़ा नाटक था, उसके 1,000 लोग देखते थे, और वो मैंने ही लिखा था, डायरेक्ट किया था, डिजाइन किया था, और एमपी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे वो मैंने बनाया एक नाटक कि वहां से एक रेल की पटरी निकलती है, और वहां पे एक गार्ड रहता है, और वहां पे फाटक है, और उस बंदे ने किसी बंदे को किडनैप कर रखा है, उसकी कहानी थी पूरा, ऐसे ओपन स्पेस में करता था मैं। तो उस नाटक में एक गाना था, तो वो गाना और उसके काफी गाने ऐसे पॉपुलर हुए, और वो मैंने रिकॉर्ड किया, तो दोस्तों ने मुझसे मांगे तो मैंने दे दिए किसी को, तो कुछ पत्रकार दोस्तों को भी दे दिया, उन्होंने गाना किसी डायरेक्टर को सुना दिया, कभी बड़े डायरेक्टर थे, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने उनके साथ फिर काम नहीं हो पाया, और उन्होंने मुझे कॉल किया कि तू बम्बई आ जा और मैं हम काम करेंगे। वो बहुत बड़ा नाम था वो डायरेक्टर का, और मैं ऐसे चमक गया। रात का टाइम था, 12 बजे के आसपास, एनएसजी से पास आउट होने के पहले की बात है, कुछ दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, और मेरे पास एक कॉल आता है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हेली रोड पे मैं चल रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ में, और एक एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैं फलाना बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं सर मैं समझा नहीं हूँ, उन्होंने बोला फलाना फलाना बोल रहा हूँ, सर सर कुत्तों की बहुत भौंकने की आवाज म्यूट हो गई है, मेरे दोस्त आगे निकल चुके हैं, आगे निकल चुके हैं, और मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ, कुत्ते मेरे आसपास पहुंच रहे हैं, मैं सुनाई देना बंद हो गया मुझे, मैंने कहा अरे हाँ सर, अरे सर मैं तो मर जाऊंगा सर, क्या हो गया सर, मैं आप बोल रहे हो क्या, हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, तो आ जाना मुंबई और अपन मिलते हैं, कुछ काम करते हैं। फिर मैं आया मुंबई, उनसे मिलना हुआ, पर वो काम नहीं बन पाया, अभी तक मैंने उनके साथ काम नहीं किया, पर उम्मीद है कि कभी ना कभी काम करेंगे, पर फिर ऐसे में मुंबई आ गया।
1: और यहां से फिर मुंबई में काम का सिलसिला शुरू हुआ।
0: हाँ, मुंबई में काम का सिलसिला तो सर ऐसे शुरू होता है कि 3 महीने तो मैं समंदर पे जाके बैठा, क्योंकि पहली बार समंदर देखा था और पता ही नहीं रहता था जाना किधर है, पर ये बता था कि वहां हर हाल में पहुंचना है, जहां जाने का ख्वाब देखा है, तो उसी तरफ बढ़ने की कोशिश करते थे, निकलते थे। फिर एक नाटक बना लिया, क्योंकि कोई काम नहीं देगा तो क्या करोगे, फिर मैंने एक नाटक बना लिया कांजी हाउस, जो मैंने ही लिखा था, और वो भी उसी बुंदेलखंड पृष्ठभूमि पे, वो शुरू ऐसे होता था, एक आकाशवाणी का छत्र वो केंद्र है। हाँ, वो क्योंकि रेडियो को बंदा था, तो रेडियो पे कोई न्यूज चल रही है, और आज शाम को 4-7 बजे उसका मैंने अनाउंसमेंट ऐसे बनाया था, इतने बजे नाटक होने वाला है जिस इस पृष्ठभूमि पे है, ऐसे करके उसमें ये अभिनेता काम कर रहे हैं, ये उसमें इस तरह के गाने, इस तरह का म्यूजिक है। तो कांजी हाउस उसको बहुत प्यार मिला, मैंने उसके 25 शो किए, और वो फिर कोविड लग गया, हम पृथ्वी करने ही वाले थे, कोविड लग गया, फिर वो पूरा का पूरा बंद हो गया नाटक। फिर अभी बहुत समय बाद मैंने एक बड़ा नाटक, मतलब कम लोगों के साथ में एक बड़ा नाटक बनाने की, बड़ी बात के साथ बनाने की कोशिश की है, जिसका नाम है बहुत जोर से प्यार लगा है, जो अभी लगातार हो रहा है। और
1: उसका एक गाना सुनाओ यार।
0: उसका टाइटल सॉन्ग सुना दूंगा मैं आपको,
1: बिल्कुल
0: सुनाता हूँ मैं आपको, उसका एक गाना है जो टाइटल सॉन्ग है, मैं एक इसकी छोटी सी कभी भी बता देता हूँ कि
1: बिल्कुल
0: एक छोटा सा सेंटेंस जिस उम्र में मैं पढ़ता हूँ, छोटी उम्र में, लाइक मैं अगर 13-14 साल का हूँ, 12-13 साल का हूँ, उस समय कोई एक कोई इंसान, ऐसा इंसान जिसके होने से आप चमकते हो, जिसके होने से आपको खुशी होती है, जिसके बगल से गुजरने से आपको कोई आपका क्रश है, और वो कोई एक ऐसी बात कह दे, एक सेंटेंस ऐसा बोल दे, उस सेंटेंस का असर कितना समय रहता है, और वो सेंटेंस आपकी पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है, वो एक सेंटेंस की कहानी है ये, एक तरीके से। अगर वो नहीं होता तो ये लड़के की जो जिंदगी है, जो गुड्डू नाम का जो कैरेक्टर है, उसकी जिंदगी कुछ और ही होती, उस घटना ने उसकी जिंदगी बदल के रख
1: दी,
0: बदल दी, उस पर ये कहानी है हर किसी की जिंदगी।

0: में ऐसा होता है, एक संवाद कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, भाषा में कितना पावर है, और अगर वो मीन करके, अगर वो सच में इंटेंसिटी के साथ बोला गया सेंटेंस है, संवाद
1: वो
0: है,
1: क्या कर
0: तो
1: सकता
0: वो
1: है?
0: क्या बदल सकता है, वो तबाही ला सकता है। तो वो कहानी है। अब ये गाना तो थोड़ा कमर्शियल गाना है क्योंकि हमारा नाटक भी कमर्शियल है, पर बात वही है कि वो फोक से शुरू होके ऐसे कमर्शियल की तरफ बढ़ता है, क्योंकि
1: ओके
0: वो कैरेक्टर भी ऐसे छोटे गांव से निकल के कहां कहां पहुंचता है, उसकी कहानी है। सो गाना है, अब कंट्रोल नहीं होता, अब बर्दाश्त के बाहर है, इसको कोई रोक सके, किसमें इतना पावर है, सीने के इस पार से लेके सीने के उस पार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है,
1: क्या
0: पै
1: बात
0: पै
1: है,
0: पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, पै पै पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, सीधे लड़के के हाथों में इलीगल हथियार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है,
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: जहन की हर एक चोट थी गायब, उन होठों में होठ थे गायब, हाथ थे गायब, बात थी गायब, दुनिया की औकात थी गायब, गायब पूरा बदन हुआ था, मैं तो उसका कफन हुआ था, बचने को बस सांस बची थी, फिर भी आधी रात बची थी,
1: वाह।
0: सुबह उठा तो कान के नीचे गर्दन पर स्कार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है, पा पा पा पा पा, बहुत जोर से प्यार लगा है।
1: क्या बात है,
0: ये
1: क्या
0: टाइटल सॉन्ग
1: बात
0: है।
1: है, बढ़िया गाना।
0: जी जी जी
1: कैसा रिस्पांस है इस नाटक का?
0: सर, जो भी देख रहा है उनको बहुत पसंद आ रहा है, और क्योंकि म्यूजिकल है तो लोग उससे और जुड़ते जा रहे हैं, और अभी हमने लगातार 5-6 शो किए हैं, हाउसफुल शो किए हैं, और हमें भी बहुत शो करने हैं, पूरे हिंदुस्तान घूमना है। तो जो भी श्रोता जो सुन रहे हैं हमें, अगर वो चाहें तो हमें बुला सकते हैं, और दो परफॉर्मेंस हम लगातार कर रहे हैं, एक तो हमारे मंडी हाउस बैंड है जो कि ऐसे गाने हैं, वो सारे गाने ओरिजिनल गाने हैं, इतने बड़े बड़े गाने हैं जो आपने फिल्मों में भी नहीं सुने होंगे, और रोहिणी ने ऐसे बोला हुआ है, मैंने भी बोला हुआ है। तो बहुत अच्छे गाने हैं और बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, और इसे कम्यून ने प्रोड्यूस किया हुआ है, और हमें इसे बहुत करना है, और अभी हम कर रहे हैं, अभी आगे हमारे शो है, हम पृथ्वी में भी करने वाले हैं, एनएमसीसी में भी कर रहे हैं, तो अभी बहुत प्यार की उम्मीद है, अभी बहुत प्यार चाहिए सर, बहुत नाम चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जगह से निकलना है ताकि बहुत सारे लोगों को ताकत मिले, और एक थोड़ा एग्जाम्पल बने कि हाँ कहीं से भी सपने देखे जा सकते हैं।
1: अभी वेब सीरीज आई थी बैंड वाले,
0: जी जी
1: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? स्वानंद है उस वेब सीरीज
0: जी जी
1: में।
0: स्वानंद दादा हैं, और अंकुर तिवारी जी ने को डायरेक्ट किया है, को क्रिएटर है वो, और अक्षय वर्मा जी ने उसको डायरेक्ट किया। उसमें मेरे कैरेक्टर नाम है जिग्गी। जिग्गी एक कैरेक्टर है जो एक लड़की को प्यार करता था, पर वो लड़की प्रोफेसर की बेटी थी, इसलिए प्रोफेसर को पता चला कि मेरी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है ये, तो उस लड़के को अपने घर बुलाया राखी वाले दिन,
1: हाँ।
0: और उससे राखी बनवा दी। तो वो जिग्गी कैरेक्टर ऐसा है कि वो राखी भाई बना हुआ बेचारा
1: बेचारा,
0: अब वो क्या करे, उसके दिमाग में बहुत है, वो प्यार भी करता है पर उसको बहन मानता है वो, अब उसको वो पीछे घूमता रहता है 24 घंटे, वो अपनी थार से उसके पीछे घूमता है, बहुत मतलब लोगों ने मुझे बहुत उसके लिए प्यार इसलिए दिया क्योंकि लोग उसमें कह रहे हैं कि तुमने उसमें बिल्कुल एक्टिंग नहीं की, क्यों? क्योंकि मेरे को लगा कि मैं उसमें क्या ही एक्टिंग करूंगा, वो मैंने उसको समझा बस कैरेक्टर को, क्योंकि समझाने वाले लोग भी अच्छे थे, स्वानंद दादा भी थे, अंकुर जी भी थे, अक्षय वर्मा जी भी थे, और आसपास के लोग, रोविंद सर उसमें काम कर रहे थे, हमारे गुरु जी रोविंद सर काम, आशीष विद्यार्थी जी उसमें काम कर रहे हैं, तो काफी लोग उसमें थे, तो उसमें बहुत ही अच्छा था, और उसमें मेरा एक गाना भी था, मैंने गाने बनाने के लिए पहले उससे जुड़ा था, गाना उसमें सब मोह माया नाम का एक गाना मैंने बनाया था। अच्छा, वो गाना कुछ ऐसा था, वो देखो सब लूप में फंस गए, सभी लिटिल विट चूक में फंस गए, रोटी से परहेज किया है, पिज्जा बर्गर सूप में फंस गए, वो देखो सब लूप में फंस गए, बुजुर्गों ने फरमाया है प्यारे सब मोह माया है, अरे टैटू भी गुदवाया है, डूड सब मोह माया है, काफी ऐसे फन सॉन्ग है, आम आदमी का गाना है कि बेचारा क्या
1: बिल्कुल
0: चाय चढ़ा के दूध में फंस गए,
1: वाह वाह,
0: पी के कई तो फूंक में फंस गए,
1: वाह,
0: पिचकारी से खेल रहे थे नजरों की बंदूक में फंस गए,
1: क्या सुन
0: उसके लिरिक्स ऐसे हैं मतलब।

0: देवेंद्र, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जिनमें आगे के लिए हमेशा गुंजाइश छोड़ दी जाए।
1: जी जी जी।
0: तो फिर कभी मिलेंगे और आगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भाई,
1: बहुत बहुत शुक्रिया। रेडियो का मेरी जिंदगी में बहुत ही योगदान रहा है, और आप यकीन नहीं मानोगे मैंने बहुत सुना है विविध भारती। मैंने सुनता था आकाशवाणी का टाइम खत्म होता था, फिर बोलते थे आप विविध भारती से कनेक्ट करते हैं, कर दिया जा रहा है आपको, फिर वहां से आप सुनते थे प्रोग्राम लगातार।
0: बिल्कुल।
1: और बहुत ही एक सादगी है, एक सरलता है।

0: कर दिया जा रहा है आपको, फिर वहां से आप सुनते थे प्रोग्राम लगातार, और बहुत ही एक सादगी है, एक सरलता है, एक मोहब्बत इतना नहीं एक रेडियो में, और मैं बड़ा मिस करता हूँ इसको। और मैंने तो सुना ही, मैंने बताया कि वो रेडियो के गाने मेरे जहन में चलते रहते थे, बैरन होगी जिंदगी मैं कहां से कहूं, जैसे गाने मैंने सुन सुन के बड़ा हुआ हूं मैं। सो मेरे साथ एक बड़ी खासियत जुड़ जाती है मेरे साथ कि मैंने थोड़ा म्यूजिक और जो लोक है, जो फोक है, वो काफी मैंने जिया है और मैंने उसको महसूस किया है। और दूसरा, मैं शहर भी रहा हूं, तो मैंने हर तरह की शहर से होके पानी पी के आया हूं, तो मेरे लिए ये काम कर जाता है। और रेडियो का मेरे लिए बड़ा योगदान है कि वो गाना नहीं सुनता, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है तो मेरे ख्याल ही नहीं आता दिमाग में, और मैं आपके साथ बैठा हुआ था।
1: सफर है।
0: हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अच्छे लोगों से बात करके, और आपको तो मैं पढ़ता आया हूँ, मैं आपकी किताब भी पढ़ी है शैलेंद्र के ऊपर, और मुझे स्वानंदा ने दी थी वो पढ़ने के लिए, तो मैं उसको भी पढ़ता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे लगातार जुड़ा रहूंगा, आपसे बात करता रहूंगा, विविध भारती से जुड़ा रहूंगा।
1: शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।

आंबेकर लॉन्स वडकी नाला पुणे। मंगल कार्य तुमचे, जबाबदारी आमची। संपर्क 9921055775 9921057575। आंबेकर लॉन्स।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
2: मिलो मिलो शाम सवरे,
1: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
3: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
1: संगीतकार सचिन देव बर्मन,
3: बहुत ही बुढ़ा किसान।

0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
1: विशेष जयमाला।

0: नमस्कार, हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने संग्रहालय से हिंदी फिल्म जगत के चुनिंदा मोती। आज का विशेष जयमाला फौजी साथियों के लिए प्रस्तुत किया है फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री नरगिस ने।
1: सुनने वालों को मेरा आदाब। रेडियो पर और दूसरे प्रोग्रामों में मैं इतना बोल चुकी हूँ कि अब कुछ कहने के लिए सोचना पड़ता है, और ऐसे मौके पर जब अपनी याददाश्त पर जोर डालती हूँ तो गुज़िश्ता जिंदगी के वाकयात तस्वीर बन बनकर सामने आते हैं और मैं उन तस्वीरों में अपने आप को तलाश करने लगती हूँ, गोया जिंदगी में गुम हो जाती हूँ। और मेरा अकीदा भी यही है कि वो कलाकार कलाकार नहीं जो जिंदगी में खो ना जाए, समा ना जाए। मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा हर रोल बनावटी न मालूम होकर असली मालूम हो। इसकी एक वजह यह भी थी कि मेरी तालीम और तरबियत ऐसे माहौल में हुई जहां जिंदगी को जिंदगी की नजर से देखा जाता था। रहा फिल्मी दुनिया से मेरे रिश्ते का सवाल, तो बस यूं समझ लीजिए कि फिल्मों से मेरा रिश्ता पैदाइशी है, यानी उस वक्त से काम कर रही हूं जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। लेकिन हीरोइन की हैसियत से मेरी पहली फिल्म थी तकदीर, जो महबूब साहब ने बनाई थी। सच तो ये है कि महबूब साहब ने मेरी फिल्मी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया कि अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा ना होगा। मैं महबूब साहब की जितनी भी तारीफ करूं कम होगी। मेरी शोहरत में महबूब साहब की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। मुझे अपनी फिल्मी जिंदगी में इतना मेहनती और समझदार डायरेक्टर कोई दूसरा नहीं मिला। इस वक्त महबूब साहब की फिल्मों के बहुत से गाने याद आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिल्म मदर इंडिया का ये गीत सुना रही हूँ।

तकदीर में जब मैंने पहली बार हीरोइन की हैसियत से काम किया था तब क्या महसूस हुआ था ये तो ठीक से याद नहीं है। हाँ, लेकिन एक वाकया जरूर याद है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मोतीलाल जी इस फिल्म के हीरो थे। वो हर लिहाज से मुझसे बड़े थे और मैं उन्हें हमेशा मोती भैया कहा करती थी। एक दिन एक रोमांटिक सीन की शूटिंग हो रही थी और मैं हर रिहर्सल के बाद कहती थी, क्यों मोती भैया, कैसा हुआ? और वो बिगड़ कर कहते थे, हद तेरा सत्यानाश, सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर, फिल्म की शूटिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मोतीलाल जी बड़े ऊंचे पाए के कलाकार थे, ऐसी बातों का असर उन पर नहीं होता था। हाँ, याद आया, इसी फिल्म में मशहूर आर्टिस्ट नूर मोहम्मद चार्ली ने मेरे बाप का रोल किया था। उनके साथ एक सीन ऐसा था कि वो जेल में बंद हैं और मैं यानी उनकी बेटी उनसे मिलने जाती। ये सीन जरा गमगीन था मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ इस अंदाज से टहलते थे कि मुझे बहुत हंसी आ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ और तब महबूब साहब झिल्ला गए और एकदम जोर जोर से चिल्लाकर मुझे डांटने लगे, यहाँ तक कि मुझे रोना आ गया। और उसी रोने के दरमियान ही महबूब साहब ने जल्दी जल्दी वो सीन मुझसे मुकम्मल करवा लिया। बहरहाल, इस वक्त मुझे ये डर है कि कहीं बातों में आपको गीत सुनवाना ना भूल जाऊं। लीजिए, ये गजल हाजिर है।

0: विशेष जयमाला में आज आपके साथ हैं फिल्म जगत की जानी मानी अदाकारा नरगिस।
1: फिल्म एक्टिंग के बारे में आप लोग आम तौर पर तरह तरह के ख्यालात रखते हैं और अलग अलग बातें सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्टर्स जैसा कहते हैं या चाहते हैं वैसा तो हर कलाकार करता है या करने की कोशिश करता है, मगर खुद फनकार को भी चाहिए कि वो अपने फन को निखारने के लिए, उसमें जान पैदा करने के लिए जिंदगी की बहुत करीब से नाप तोल करे और खास तौर पर जो टिपिकल कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं उन्हें गौर से समझे। इस सिलसिले में मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ। फिल्म अनहोनी में मेरा डबल रोल था। जो खास और मुश्किल रोल था वो एक तवायफ का कैरेक्टर था। उसे सही ढंग से अदा करने के लिए मैं अपने भाई के साथ मर्दाना भेस बदल कर एक कोठे पर गई। वहाँ आए हुए लोगों के बीच बैठकर मुजरा सुना और उस नर्तकी की चाल ढाल, बातचीत, नाच गाना, पान पेश करने की अदा वगैरह वगैरह मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा, ताकि मैं अपनी एक्टिंग से उस किरदार के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकूं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कलाकार को खुद भी काफी मेहनत करनी चाहिए। और अब इससे पहले कि कोई नई बात शुरू करूँ, ये गाना पेश करना चाहती हूँ।

मदर इंडिया के बाद मैंने सिर्फ एक फिल्म में काम किया है और वो फिल्म है दिन और रात, वो भी किसी खास वजह से। दरअसल मेरे भाई अख्तर हुसैन की जिद थी कि मैं ही इस फिल्म में काम करूं, क्योंकि

कहानी में एक ही लड़की के दो किरदार एक साथ चलते हैं। लड़की स्किज़ोफ्रेनिया की मरीज है, ये एक दिमागी बीमारी होती है। उस रोल को करने के लिए मैंने कई माने हुए डॉक्टरों से इस मर्ज की जानकारी हासिल की, हॉस्पिटल में जाकर शॉक ट्रीटमेंट भी देखा। खैर, शॉक देते वक्त जो हालत मरीज की होती है वो एक्टिंग से जाहिर नहीं की जा सकती। बहरहाल मैंने कोशिश की थी हकीकत तक पहुंचने की, मतलब सिर्फ ये है कि एक्टिंग को अगर हम आर्ट समझकर करें तो हमें काफी मेहनत और रियाज करना पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें तो होती ही रहेंगी, लीजिए बातों के साथ साथ गीतों का भी मजा लेते चलिए।

0: विशेष जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: सुबह जलाओ शाम जलाओ।
2: सर्वोत्तम क्वालिटी का स्वरूप देव दर्शन धूप।
3: इस कार्यक्रम के पहले भाग के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय माला। आज का विशेष जय माला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है फिल्म जगत की जानी मानी अदाकारा नरगिस ने। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का शेष भाग।
1: यादें फिल्म देखने के बाद लोगों ने सवालों की बौछार कर दी थी कि ये आइडिया आपको कहाँ से आया, कैसे आया, वगैरह वगैरह।

किस्सा यूं है कि मैं यूरोप एक फिल्म फेस्टिवल में गई थी, बच्चे भी मेरे साथ थे और सुनील उस वक्त मद्रास में शूटिंग कर रहे थे। अचानक एक दिन सुनील का दिल घबराया तो वो बंबई के लिए रवाना हुए। रास्ते में ये सोचते हुए कि घर पहुंचकर बच्चे ऐसे मिलेंगे, ऐसी ऐसी बातें होंगी, लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो कोई भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। तब उन्हें याद आया कि सब लोग तो लंदन गए हैं। बहरहाल जब वो अकेले घर में सोए तो उन्हें ऐसा लगा कि बच्चा पलंग से गिरकर रो रहा है। वो फौरन उठ बैठे, बच्चे को ढूंढने लगे और मुझे जोर जोर से पुकारने लगे, यानी तरह तरह से उन्हें हम लोगों की याद आती रही। वो इस कदर परेशान हुए कि बाकी रात उन्होंने एक होटल में गुजारी और दूसरे ही दिन मुझे टेलीग्राम दिया कि मैं आ रहा हूँ, तुम लोग वहीं ठहरो। और खुद पहुंचकर उन्होंने मुझे जब ये वाकया सुनाया तो मैंने कहा, अब खुद ही सोच लीजिए कि जब बीवी घर छोड़कर कहीं जाती है तो बेचारे शौहर की कैसी बुरी हालत होती है।

0: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला। आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है फिल्म जगत की जानी मानी अदाकारा नरगिस ने। सुनिए कार्यक्रम का शेष भाग।
1: जैसा कि आप सब जानते हैं, फिल्मों से मेरा संबंध काफी पुराना है, इसीलिए पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में काफी फर्क मुझे नजर आता है। खास तौर पर टेक्निकली हम लोगों ने बहुत तरक्की की है, लेकिन स्टोरी और डायलॉग के मामले में हम लोग तरक्की करने के बजाय कुछ पीछे ही खिसक आए हैं। इसके सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अब ऊपरी सजावट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। आजकल फिल्मों में कश्मीर, कुल्लू और मनाली की हसीन वादियां तो देखने में आती ही हैं, लेकिन पत्थर को मोम कर देने वाले डायलॉग सुनने में नहीं आते। बहरहाल ऐसा भी नहीं कि आजकल हर फिल्म ऐसी ही होती है, बल्कि कुछ अच्छी फिल्में भी बनती हैं। अच्छा, बातें तो होती ही रहेंगी। लीजिए अब ये गीत सुनिए।

0: विशेष जयमाला में आज आपके साथ हैं फिल्म जगत की जानी मानी अदाकारा नरगिस।
1: इसमें कोई शक नहीं कि आज फिल्म हमारी रोजमर्रा जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है और हम इसके जरिए किसी भी अच्छे ख्याल का प्रचार कर सकते हैं, समाजी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। मगर मुश्किल ये है कि आज का समाज दो बड़े हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा वो है जो कहता है कि फिल्मों में उन चीजों को जरूर दिखाना चाहिए जो हिंदुस्तानी फिल्मों में नहीं दिखाई जाती। दूसरा हिस्सा वो है जो लाज और हया को औरत का सबसे बड़ा जेवर समझता है। अब सवाल ये है कि फिल्मी दुनिया किसके तकाजे को पूरा करे और प्रोड्यूसर किस तरह की फिल्में बनाए। होता यह है कि प्रोड्यूसर्स फिल्म में सेक्स को भी तरह तरह से एक्सप्लॉइट करता है और हिंदुस्तानी कल्चर की सादगी और सभ्यता भी दिखाने की कोशिश करता है। उसका नतीजा ये होता है कि फिल्म चूचू का मुरब्बा बनकर रह जाती है। बहरहाल ये टॉपिक बड़ी लंबी चौड़ी बहस चाहता है। इस वक्त ना मैं बहस में उलझना चाहती हूँ और ना आपको उलझाना चाहती हूँ। लीजिए इस गीत से अपना मूड बदलिए।

0: भीती, गैरसमज आणि अफवांच्या पलीकडे जाणून घेऊया जाणकार डॉक्टर पियुष चौधरी यांच्याकडून. हॅलो डॉक्टर, या कार्यक्रमाच्या ध्वनिमुद्रणात सहभागी होऊया मंगळवार दिनांक 26 मे रोजी दुपारी 3:30 ते 4 या वेळेत. फोन नंबर आपले नेहमीचेच 0202-553-1705 किंवा 6. नक्की फोन करा एड्स वॅक्सिनेशन याविषयी आपल्या आवडीच्या कार्यक्रमात, ज्याचं नाव आहे हॅलो डॉक्टर.
1: आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का शेष भाग.
2: हमने राजस्थान में फिल्म रेशमा और शेरा की शूटिंग की और वहाँ का जिक्र बहुत जरूरी है. इसलिए नहीं कि हमने वहाँ शूटिंग की है, बल्कि इसलिए कि वहाँ के लोगों में जो हौसला, जो भाईचारा देखा, वो हमारे मुल्क के लिए और दुनिया के लिए मिसाल है. आप खुद ही गौर कीजिए, पानी न बरसा हो, जहाँ एक हरी पत्ती की तलाश में आंखें पथरा जाएं, जहाँ के लोग भूख प्यास का सामना करते हुए तपती हुई रेत पर चलकर मीलों दूर से पानी ले आए, मगर अपने गांव को न छोड़ें, उन्हें अपनी धरती से कितना प्यार होगा. करीब 2 महीने हम लोग वहाँ रहे. मुश्किल से 10-12 घरों का गांव था. वहाँ के सब लोग हमसे इतना घुल मिल गए थे कि जब हम लोग वहाँ से चलने लगे तो उनकी आंखों में आंसू थे. हम भी अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे और सुनील की तो अजीब ही हालत थी. उन्होंने कहा कि मैं अपना टेंट खुद उखाड़ूंगा. उस वक्त सुनील की आवाज रुंधी हुई थी, दिल भरा हुआ था और शायद वो अपने आप को काबू में रखने के लिए खुद से जंग कर रहे थे. हम लोग शुक्र गुजार हैं उन गांव वालों के, जिन्होंने हमें प्यार और मोहब्बत का ना खत्म होने वाला खजाना दिया. बेशक जैसलमेर के उस गांव के वो लोग हमारी तहजीब का जीता जागता नमूना है. आखिर में अपने सुनने वालों को रेशमा और शेरा का गीत सुनवाती हूँ, जिसे बाल कवि बैरागी जी ने लफ्जों का जामा पहनाया है और राजस्थान के उस इलाके की पूरी मंजर कशी की है. संगीतकार हैं जयदेव, और जयदेव के लिए ये जरूर कहूंगी कि जयदेव ने कभी दौलत के आगे सर नहीं झुकाया. वो म्यूजिक उतना ही देते हैं जितनी जरूरत होती है, बल्कि जयदेव एक ऐसा कलाकार है जो गीत को संगीत से सजाता है, गीत के लिए संगीत को बेचता नहीं. लीजिए रेशमा और शेरा का ये गीत सुनिए.

तो दोस्तों ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम। फौजी साथियों की सेवा में इसे प्रस्तुत किया फिल्म जगत की जानी मानी अदाकारा नरगिस ने। विविध भारती के संग्रहालय से ये रिकॉर्डिंग हम खास आपके लिए लेकर आए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, तुमने पोते प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
3: छाया गीत
1: लग जा गले।
3: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
4: मेरे सपने अब
3: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
4: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
3: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।
0: आप हैं विविध भारती के संग।
5: जिज्ञासा,
0: जिज्ञासा जिज्ञासा ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है चाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना और चाय उद्योग से जुड़े हुए लोगों की तरफ ध्यान खींचना। दरअसल

अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस साल 2005 से मनाया जा रहा है, लेकिन पहले ये दिन 15 दिसंबर को मनाया जाता था। साल 2015 में यूनाइटेड नेशंस के खाद्य और कृषि संगठन ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में इंटरनेशनल टी डे मनाने का एक प्रस्ताव रखा और 21 दिसंबर 2019 को इसे एक्सेप्ट कर लिया गया और 21 मई को इंटरनेशनल टी डे घोषित कर दिया गया। 21 मई 2020 को पहली बार इंटरनेशनल टी डे मनाया गया था और तब से आज तक लगातार टी डे मनाया जा रहा है। आप जानते होंगे कि भारत की कुछ चाय बहुत ही मशहूर हैं, जैसे असम की रोंगा साह। ये असम के चाय बागानों में उगने वाली खास चाय होती है। ये हल्के भूरे और लाल रंग की होती है। बंगाल की दार्जिलिंग चाय का नाम तो हम सभी ने सुना है और इसे चाय की शैंपेन कहा जाता है। तमिलनाडु की नीलगिरी चाय नीलगिरी पहाड़ियों पर उगाई जाती है और इसमें मसालों का भी फ्लेवर आता है। और कश्मीर की नून चाय जो बहुत ही अलग तरह की चाय होती है। अब जानते हैं कि चाय की खोज किस तरह से हुई थी। कहते हैं कि करीब 2700 ईसा पूर्व चीनी शासक शेन नुंग बगीचे में बैठे गर्म पानी पी रहे थे, तभी एक पेड़ की पत्ती उस पानी में आ गिरी, जिससे उसका रंग बदला और पानी एकदम महक उठा। राजा ने चखा तो उन्हें इसका स्वाद बड़ा पसंद आया और इस तरह से चाय का आविष्कार हुआ। एक और कहानी के मुताबिक 6वीं सदी में चीन के हुनान प्रांत में भारतीय बौद्ध भिक्षु बोधिधर्म बिना सोए ध्यान साधना करते थे। वो जागे रहने के लिए एक खास तरह के पौधे की पत्तियों को चबाया करते थे। बाद में यही पौधा चाय के रूप में मशहूर हुआ। चीन में शुरुआती दौर में चाय को एक औषधि, एक दवा माना जाता था। लोग ये मानते थे कि चाय पीने से दिमाग तेज होता है, हाजमा बेहतर रहता है और शरीर में जोशो खरोश बना रहता है। भारत में चाय अंग्रेजों की देन है, वही भारत में चाय लेकर आए थे। साल 1834 में जब गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक भारत आए तो उन्होंने असम में लोगों को एक तरह की पत्तियों को पानी में उबालकर दवाई की तरह पीते हुए देखा था। दरअसल ये चाय की ही पत्तियां थी। बेंटिक ने असम के लोगों को इन पत्तियों के बारे में बताया और इस तरह से भारत में चाय की शुरुआत हुई। आज हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी लेकर आए हैं और वो है प्रोफेशनल टी टेस्टर का करियर कैसे अपनाया जा सकता है। दरअसल ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें चाय की क्वालिटी, खुशबू और चाय के टेस्ट को परखने का काम किया जाता है। अगर आपको चाय की अलग अलग वैरायटी को समझने में दिलचस्पी है और अगर आप ये करियर अपनाना चाहते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। प्रोफेशनल टी टेस्टर का काम चाय पीना नहीं होता, बल्कि वो चाय की पत्तियों की क्वालिटी, उसकी एरोमा, रंग और उसके टेस्ट को बड़ी बारीकी से जांचता है। इसके अलावा टी टेस्टर चाय के नए ब्लेंड तैयार करता है, मार्केट ट्रेंड को समझता है, ग्राहकों की पसंद के हिसाब से फ्लेवर चुनने का काम भी करता है। बड़ी बड़ी चाय कंपनियों में और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में टी टेस्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। टी टेस्टर बनने के लिए कोई एक तयशुदा डिग्री या कोर्स नहीं होता, लेकिन फूड साइंस, एग्रीकल्चर, बॉटनी या हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा कोई कोर्स आपने किया होगा तो इससे काफी मदद मिलती है। भारत में कई संस्थान टी टेस्टिंग और टी मैनेजमेंट से जुड़े हुए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स करवाते हैं। सिलीगुड़ी में कुछ संस्थान है जो 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स कराते हैं, जहां चाय की पहचान, टेस्टिंग की टेक्निक और क्वालिटी चेकिंग सिखाई जाती है। इसके अलावा इंटरनेशनल टी मास्टर्स एसोसिएशन और यूके टी एकेडमी जैसे संस्थान विदेशों में हैं और सर्टिफिकेशन कोर्स कराते हैं। इस फील्ड में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपके भीतर ये काबिलियत होना चाहिए कि आप चाय के स्वाद और उसकी खुशबू को बारीकी से पहचान पाएं। इसके अलावा धीरज, ऑब्जर्वेशन स्किल, फूड टेस्टिंग की समझ और मार्केट नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको चाय की उत्पादन और उसकी प्रोसेसिंग की जानकारी होगी तो इससे एक्स्ट्रा मदद मिलती है। इन दिनों गर्मी बहुत ज्यादा तेज पड़ रही है। जब धरती आसमान तपते हैं तो इंसानी संवेदनाएं ठंडी पड़ जाती हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या शानदार डायलॉग है, पर असल में ये एक वैज्ञानिक सच्चाई है। वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है कि दुनिया के तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर हमारे शरीर पर पड़ता है और हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है, लेकिन अब ये भी पता चला है कि इसका असर हमारी भावनाओं और हमारे मूड या हमारी

दुर्दशा पर भी पड़ता है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी समेत दुनिया के कई संस्थानों से जुड़े वैज्ञानिकों ने एक स्टडी की। उससे पता चला कि गर्म मौसम में लोगों की भावनाएं नेगेटिव और निराशाजनक हो जाती हैं। अध्ययन में ये पाया गया कि जब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो सोशल मीडिया पर लोगों के पोस्ट नेगेटिव हो जाते हैं। ये असर कमजोर देशों में कहीं ज्यादा साफ नजर आता है। ये स्टडी 157 देशों में की गई, 120 करोड़ से ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट का एनालिसिस किया गया। 2019 में ये पोस्ट आई थी। 65 अलग अलग भाषाओं में की गई इन पोस्टों को पढ़ने समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया और उसके बाद ये पता चला कि जब तापमान बहुत ज्यादा होता है तो लोग चिड़चिड़े और नेगेटिव हो जाते हैं और उनका टेंशन बढ़ जाता है। नतीजे ये बताते हैं कि जब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार जाता है तो आर्थिक रूप से कमजोर देश के लोग 25% से ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, जबकि विकसित देशों में ये दर 8% के आसपास देखी गई है। अब ये बात सुनने में कितनी अजीब लगती है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि बढ़ता हुआ तापमान सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य और आर्थिक कामकाज पर ही असर नहीं डालता, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की भावनाओं पर भी असर डालता है और ये असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। हर साल 20 मई को पूरी दुनिया में विश्व मधुमक्खी दिन मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है मधुमक्खी और अन्य परागण करने वाले जीवों के बारे में लोगों को जागरूक करना। मधुमक्खियां वैसे तो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन पर्यावरण और मानव जीवन को संतुलित रखने में इनकी भूमिका बहुत ज्यादा है। आप सभी जानते हैं कि मधुमक्खियां फूलों का परागण या पॉलिनेशन करती हैं और इससे फल, सब्जियां और तरह तरह की फसलें उगती हैं। इसीलिए मधुमक्खियों को कुदरत के सबसे मेहनतकश जीवों में गिना जाता है। मधुमक्खी दिन की शुरुआत साल 2018 में हुई थी और यूरोप का देश है स्लोवेनिया, वहां की गवर्नमेंट ने ये पहल की थी और संयुक्त राष्ट्र ने 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। दरअसल ये दिन इसलिए चुना गया क्योंकि आधुनिक मधुमक्खी पालन के जो जनक माने जाते हैं एंटोल जांशा, उनका जन्मदिन था ये और उन्हें नमन करते हुए इस दिन का चुनाव किया गया विश्व मधुमक्खी दिवस मनाने के लिए। मधुमक्खियां हमारी जिंदगी और पर्यावरण के लिए बहुत मायने रखती हैं। जैसा कि हमने कहा कि इनके बिना पौधों का पॉलिनेशन या परागण नहीं हो सकता। इससे आप समझ सकते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी खाने पीने की चीजें हैं उनमें मधुमक्खियों का योगदान है। दुनिया की 35% फसलों के उत्पादन में परागण करने वाले जीव सीधी सीधी मदद करते हैं। यही नहीं, 90% जंगली फूलों के पौधों को जिंदा रखने में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। मधुमक्खियां न केवल हमारे खाने को बनाए रखती हैं बल्कि जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने के लिए भी बहुत मददगार होती हैं। ये पौधों के प्रजनन में बहुत मदद करती हैं जिससे जंगल और खेत दोनों ही स्वस्थ रहते हैं और मधुमक्खियों के जरिए गांव के लोगों को जो रोजगार मिलता है वो अलग है, क्योंकि शहद और मोम जैसे उत्पादों के जरिए लोग अपनी जिंदगी चलाते हैं। पर क्या आपको पता है कि आजकल मधुमक्खियों की तादाद तेजी से घट रही है और इसके पीछे वजह है जंगलों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, रासायनिक कीटनाशकों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। यदि ये स्थिति ऐसे ही बनी रही तो आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण दोनों पर गंभीर असर पड़ सकता है, इसलिए इनके संरक्षण की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। साल 2026 में विश्व मधुमक्खी दिवस की जो थीम थी वो थी लोगों और धरती के लिए साथ मिलकर एक ऐसी साझेदारी जो हम सभी को बनाए रखती है। दरअसल ये मधुमक्खी और इंसान के रिश्तों को दिखाने वाली थीम है। हजारों सालों से इंसान और मधुमक्खियां एक दूसरे से जुड़े हैं। लोग शहद के लिए मधुमक्खियों को पालते हैं और बदले में मधुमक्खियां कुदरत का संतुलन बनाकर रखती हैं। आधुनिक तकनीक हो और पारंपरिक ज्ञान, अगर ये आपस में मिल जाएं तो मधुमक्खी पालन ज्यादा सेफ तरीके से और ज्यादा सस्टेनेबल तरीके से किया जा सकता है। मधुमक्खियां ये याद दिलाती हैं कि ये जीव भले ही छोटा सा है लेकिन धरती के लिए बड़ी भूमिका निभाता है।

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक चीज को लेकर हम सभी को बहुत ज्यादा खबरदार किया है। WHO ने यह बोला है कि सीसा या लेड इंसान के भीतर पाया जा रहा है। WHO के अनुसार हर साल तकरीबन 35 लाख लोगों की मौत दिल से जुड़ी बीमारियों से होती है और इसका सीधा सीधा ताल्लुक है लेड के जहर से। दुनिया में तकरीबन 81.5 करोड़ बच्चे सीसे के कांटेक्ट में हैं, लेड के कांटेक्ट में हैं, यानी दुनिया का हर तीसरा बच्चा। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि लेड शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक मेटल है और इसका असर सबसे ज्यादा बच्चों पर, प्रेग्नेंट महिलाओं पर और लेड इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों पर पड़ता है। अगर लेड हमारे शरीर में जाता है, खासतौर पर बच्चों के शरीर में, तो उनकी मानसिक क्षमता पर असर पड़ता है और इसके अलावा पढ़ाई और सोचने समझने की शक्ति और

लेड इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों पर पड़ता है। अगर लेड हमारे शरीर में जाता है, खासतौर पर बच्चों के शरीर में, तो उनकी मानसिक क्षमता पर असर पड़ता है और इसके अलावा पढ़ाई और सोचने समझने की शक्ति और इसके अलावा उनकी कमाई, इन सब पर बहुत गहरा असर पड़ता है। दिल, दिमाग, किडनी और हमारे तंत्रिका तंत्र पर लेड बहुत बुरा असर डालता है। पूरे देश में जेठ के महीने में गर्मी अपने प्रचंड रूप में होती है और यही वो दिन है जब नौतपे की शुरुआत होती है। अगले हफ्ते में नौतपा शुरू हो जाएगा। 25 मई से 2 जून तक के ये 9 दिन हैं जब गर्मी अपने चरम पर होगी। इस दौरान तेज लू चलेगी और झुलसा देने वाली धूप जो सीधे हमारे दिलो दिमाग पर असर डालती है। ज्यादा पसीने की वजह से शरीर से पानी और जरूरी मिनरल्स तेजी से बाहर निकल जाते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन, कमजोरी, सिरदर्द और हाजमे से जुड़ी दिक्कतें होती हैं। तो ये जो समय है नौतपा का, जब सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ऐसे में कैसी खुराक लें? ऐसी खुराक जो पचने में हल्की हो और जिसमें पानी बहुत ज्यादा मात्रा में हो। यानी ऐसे दिनों में आपको अपनी डाइट में तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, संतरा जैसी चीजें शामिल करना चाहिए, क्योंकि इनमें 90% पानी होता है। और एक बात यह है कि शरीर में ऐसे दिनों में फ्लूड बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। दोपहर और रात के खाने में आपको हैवी चीजें नहीं लेनी है, सादा और हल्का खाना खाएं। मूंग की दाल की खिचड़ी, दाल चावल, दलिया, पतली रोटी और हरी सब्जी खाएं। नौतपे में ज्यादा मसालेदार और तला भुना खाना नहीं खाना है। मिर्च मसाले, कचौरी, समोसे, प्रोसेस्ड फूड वगैरह खाएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी और तबीयत खराब होगी। चाय कॉफी जितनी कम से कम पिएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। मीठी चीजें छोड़ दीजिए। इसके अलावा बासी और खुला हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाना है। नौतपे के दौरान आपको ये इंतजार नहीं करना है कि आपको प्यास महसूस हो रही है या नहीं। हर आधे एक घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है। दिन में 12 बजे से 4 बजे के बीच तो घर से बाहर नहीं निकल, खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और प्रेग्नेंट महिलाओं को या बीमार लोगों को इस दौरान बाहर नहीं निकलने देना है। तो सावधानी रखेंगे, नौतपे के ये दिन बीत जाएंगे और उसके बाद जब मॉनसून आएगा तो धरती में बहुत ज्यादा बारिश होगी और सुकून मिलेगा। तो इंतजार करते हैं बारिश का। ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख, स्वर और संपादन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। जिज्ञासा।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। सुनो कहानी के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियाँ, पत्नी का पत्र। इस कहानी का चौथा और अंतिम भाग लीजिए आज प्रस्तुत है, वाचन स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का।

मेरा छोटा भाई शरद कलकत्ता में कॉलेज में पढ़ता था। तुम तो जानते ही हो, तरह तरह से वॉलेंटियरी करना, प्लेग वाले मोहल्लों में चूहे मारना, दामोदर में बाढ़ आ जाने की खबर सुनकर दौड़ पड़ना, इन सब बातों में उसका इतना उत्साह था कि एफए की परीक्षा में लगातार दो बार फेल होने पर भी उसके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। मैंने उसे बुलाकर कहा, शरद जैसे भी हो बिंदु की खबर पाने का इंतजाम तुझे ही करना पड़ेगा। बिंदु को मुझे चिट्ठी भेजने का साहस नहीं होगा, वो भेजे भी तो मुझे मिल नहीं सकेगी। शरद के साथ बातचीत कर रही थी तभी तुमने मेरे कमरे में आकर कहा, तुम फिर ये क्या बखेड़ा खड़ा कर रही हो? मैंने कहा, वही जो शुरू से करती आई हूं जब से तुम्हारे घर आई हूं। लेकिन नहीं, वो तो तुम्ही लोगों की कीर्ति है ना। तुमने पूछा, बिंदु को लाकर फिर कहीं छिपा रखा है क्या तुमने? मैंने कहा था, बिंदु अगर आती तो मैं जरूर छिपा कर रख लेती, लेकिन वो अब नहीं आएगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। शरद को मेरे पास देखकर तुम्हारा संदेह और भी बढ़ गया। मैं जानती थी कि शरद का हमारे यहाँ आना जाना तुम लोगों को पसंद नहीं है। तुम्हें डर था कि उस पर पुलिस की नजर है, अगर कभी किसी राजनीतिक मामले में फंस गया तो तुम्हें भी फंसा डालेगा। इसीलिए मैं भैया दूज का तिलक भी आदमी के हाथों उसी के पास भिजवा देती थी, अपने घर नहीं बुलाती थी। एक दिन तुमसे सुना कि बिंदु फिर भाग गई है, इसीलिए उसका जेठ हमारे घर उसे खोजने आया है। सुनते ही मेरी छाती में शूल चुप गया। अभागिनी का असह्य कष्ट तो मैं समझ गई, पर फिर भी कुछ करने का कोई रास्ता नहीं था। शरद पता करने दौड़ा। शाम को लौटकर उसने मुझसे बोला, बिंदु अपने चचेरे भाइयों के यहाँ गई थी, लेकिन उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर उसी वक्त उसे फिर ससुराल पहुंचा दिया। इसके लिए उन्हें हर जाने का और गाड़ी के किराए का जो दंड भोगना पड़ा उसकी खार अब भी उनके मन से नहीं गई है। श्री क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करने के लिए तुम लोगों की काकी तुम्हारे यहाँ आकर ठहरी। मैंने तुमसे कहा, मैं भी जाऊंगी। अचानक मेरे मन में धर्म के प्रति ये श्रद्धा देखकर तुम इतने खुश हुए कि तुमने तनिक भी आपत्ति नहीं की। तुम्हें इस बात का भी ध्यान था कि अगर मैं कलकत्ता में रही तो फिर किसी न किसी दिन बिंदु को लेकर झगड़ा कर बैठूंगी। मेरे मारे तुम्हें बड़ी परेशानी थी। मुझे बुधवार को चलना था, रविवार को ही सब ठीक ठाक हो गया। मैंने शरद को बुलाकर कहा, जैसे भी हो बुधवार को पूरी जाने वाली गाड़ी में तुझे बिंदु को चढ़ा ही देना पड़ेगा। शरद का चेहरा खिल उठा था। वो बोला, डर की कोई बात नहीं जीजी, मैं उसे गाड़ी में बिठाकर पुरी तक चला चलूंगा। इसी बहाने जगन्नाथ जी के दर्शन भी हो जाएंगे। उसी दिन शाम को शरद फिर आया। उसका मुंह देखते ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, क्या बात है शरद, शायद कोई रास्ता नहीं निकला? वो बोला, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने पूछा, क्या उसे राजी नहीं कर पाए? उसने कहा, जी अब जरूरत भी नहीं है। कल रात अपने कपड़ों में आग लगाकर वो आत्महत्या करके मर गई। चलो छुट्टी मिले। बिंदु! गांव भर के लोग चीख उठे, कहने लगे, लड़कियों का कपड़ों में आग लगाकर मर जाना तो अब एक फैशन सा हो गया है। तुम लोगों ने कहा, अच्छा नाटक है। ऐसा ही था बिंदु का दुर्भाग्य। जितने दिन जीवित रही तनिक भी यश नहीं मिल सका, न रूप का न गुण का। मरते वक्त भी ये नहीं हुआ कि सोच समझकर कुछ ऐसे नए ढंग से मरती कि दुनिया भर के लोग खुशी से ताली बजा उठते। मरकर भी उसने लोगों को नाराज ही किया। बिंदु

दोस्तों, पिछले हफ्तों में आपने सुना, बिंदु का रंग काला होने से उसके विवाह में अड़चने आती हैं, लेकिन एक पागल व्यक्ति से उसका विवाह तय हो जाता है। बिंदु कतई नहीं चाहती शादी करना, लेकिन उसकी शादी एक पागल व्यक्ति से हो जाती है। कुछ ही दिनों में वो मृणाल के घर वापस शरण लेती है, लेकिन उसके ससुराल से उसके जेठ आते हैं और हंगामा खड़ा करते हैं। अब आगे

आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। जीजी कमरे में जाकर चुपचाप रोने लगी, लेकिन उस रोने में जैसे एक सांत्वना थी। कुछ भी सही, जान तो बची, मर गई, यही क्या कम है। अगर बची रहती तो न जाने क्या क्या हो जाता। मैं तीर्थ में आ पहुंची हूं, बिंदु के आने की तो जरूरत ही न रही, लेकिन मुझे जरूरत थी। लोग जिसे दुख मानते हैं, वो तुम्हारी गृहस्थी में मुझे कभी नहीं मिला। तुम्हारे यहां खाने पहनने की कोई कमी नहीं। तुम्हारे बड़े भाई का चरित्र चाहे जैसा हो, तुम्हारे चरित्र में ऐसा कोई दोष नहीं जिसके लिए विधाता को बुरा कह सकूं। वैसे अगर तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे बड़े भाई की तरह भी होता तो भी शायद मेरे दिन करीब करीब ऐसे ही कट जाते और मैं अपनी सती साध्वी बड़ी जेठानी की तरह पति देवता को दोष देने की बजाय विश्व देवता को ही दोष देने की चेष्टा करती। इसलिए मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करना चाहती। मेरी चिट्ठी का कारण ये नहीं है, लेकिन मैं अब माखन बड़ाल की गली के तुम्हारे उस 27 नंबर वाले घर में लौटकर नहीं जाऊंगी। मैं बिंदु को देख चुकी हूं। इस संसार में नारी का सच्चा परिचय क्या है ये मैं पा चुकी हूं। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और फिर मैंने ये भी देखा है कि वो लड़की ही क्यों न हो, भगवान ने उसका त्याग नहीं किया। उस पर तुम लोगों का चाहे कितना ही जोर क्यों न रहा हो, वो उसका अंत नहीं था। वो अपने अभागे मानव जीवन से बड़ी थी। तुम लोगों के पैर इतने लंबे नहीं थे कि तुम मनमाने ढंग से अपने हिसाब से उसके जीवन को सदा के लिए उनसे दबा कर रख सकते। मृत्यु तुम लोगों से भी बड़ी है, अपनी मृत्यु में वो महान है। वहां बिंदु केवल बंगाली परिवार की लड़की नहीं है, केवल चचेरे भाइयों की बहन नहीं है, केवल किसी अपरिचित पागल पति की प्रवंचिता पत्नी नहीं है। वहां वो अनंत है। मृत्यु की उस वंशी का स्वर उस बालिका के भग्न हृदय से निकलकर जब मेरे जीवन की यमुना के पास बजने लगा तो पहले पहल मानो मेरी छाती में कोई वाण बिंध गया हो। मैंने विधाता से प्रश्न किया, भगवान इस संसार में जो सबसे अधिक तुच्छ है वही सबसे अधिक कठिन क्यों है। इस गली में चार दीवारी से घिरे इस निरानंद स्थान में ये जो तुच्छतम बुद्बुद है वो इतनी भयंकर बाधा कैसे बन गया। तुम्हारा संसार अपनी षठ नीतियों से क्षुधा पात्र को संभाले कितना ही क्यों न कोई पुकारे, मैं उस अंतापुर की जरा सी चौखट को क्षण भर के लिए भी पार क्यों नहीं कर सकी। ऐसे संसार में ऐसा जीवन लेकर मुझे इस अत्यंत तुच्छ काठ पत्थर की आड़ में ही तिल तिल कर क्यों मरना होगा भला, क्यों। कितनी तुच्छ है ये मेरी प्रतिदिन की जीवन यात्रा, इसके बंधे नियम, बंधे अभ्यास, बंधी हुई बोली, बंधी हुई मार, सब कुछ कितनी तुच्छ है। फिर भी क्या अंत में दीनता के उस नागपाश बंधन की जीत होगी। और तुम्हारे अपने इस आनंद लोक की इस सृष्टि की हार। लेकिन मृत्यु की बंसी बजने लगी। कहां गई राजमिस्त्रियों की बनाई हुई वो दीवार, कहां गया तुम्हारे घोर नियमों से बंधा वो कांटों का घेरा। कौन सा है वो दुख, कौन सा है वो अपमान जो मनुष्य को बंदी बनाकर रख सकता है। ये लो, मृत्यु के हाथ में जीवन की जय पताका उड़ रही है। अरे मझली बहू, मझली बहू, तुझे डरने की अब कोई जरूरत नहीं। मझली बहू के इस तेरे खो

को छिन्न होते एक निमेश भी नहीं लगा। तुम्हारी गली का अब मुझे कोई डर नहीं। आज मेरे सामने नीला समुद्र है, मेरे सिर पर आषाढ़ के बादल। तुम लोगों की रीति नीति के अंधेरे ने मुझे अब तक ढक के रखा था। बिंदु ने आकर क्षण भर के लिए उस आवरण के छेद में से मुझे देख लिया। वही लड़की अपने मृत्यु द्वारा सिर से पैर तक मेरा वो आवरण उघाड़ दिया। आज बाहर आकर देखती हूँ, अपना गौरव रखने के लिए कहीं जगह ही नहीं है। मेरा ये अनाहत रूप, जिनकी आंखों को भाया है, वे सुंदर आज संपूर्ण आकाश से मुझे निहार रहे हैं। अब मछली बहू की खैर नहीं, तुम सोच रहे होगे मैं मरने जा रही हूं। नहीं, डरने की कोई बात नहीं। तुम लोगों के साथ मैं ऐसा पुराना मजाक नहीं करूंगी। मीराबाई भी तो मेरी ही तरह नारी थी, उनकी जंजीरें भी तो कम भारी नहीं थी। मीराबाई ने अपने गीत में कहा था, बाप छोड़े माँ छोड़े जहाँ कहीं भी जो भी है सब छोड़े, लेकिन मीरा की लगन वहीं रहेगी प्रभु। अब जो होना है सो ये लगन ही तो जीवन है। मैं अभी जीवित रहूंगी, मैं बच गई हूँ, जीवित रहूंगी। तुम लोगों के चरणों के आश्रय से छूटी हुई मैं जीवित रहूंगी।

0: सुनो कहानी में इन दिनों आप सुन रहे हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियाँ, पत्नी का पत्र। इस कहानी का ये था चौथा और अंतिम भाग, वाचन स्वर ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।
1: सुनो कहानी।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म सूबेदार से, आवाज़ जी डी कौर की थी। गीत के बोल यंगवीर, रोहिताश और गैक्सिनिया की थी। संगीत ऋत्विक और शाइन और राज मावेर का था।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म ओ रोमियो से। आवाजें सुखवंदर सिंह, रेखा भारद्वाज की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत विशाल भारद्वाज का।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: समय एक छोटे से अंतराल का शेष कार्यक्रम इस छोटे से अंतराल के बाद।
5: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
6: श्रोते हो, दररोज संध्याकाळी 5:30 वाजता जरूर ऐका कार्यक्रम पुन्हा आय केअर सांज धारा। या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत पुन्हा आय केअर, मिशन हेल्दी आईज।
7: दररोज संध्याकाळी 6:15 वाजता जरूर ऐका सुमधुर गीतांचा कार्यक्रम। डॉक्टर परीक्षित फेगडे, गीतांजली, प्रायोजक डॉक्टर परीक्षित फेगडे यांचे सिद्धिविनायक क्लिनिक, आरोग्यम नमोस्तुते, सांधेदुखी आणि गुडघेदुखीवर रामबाण उपचार।
4: यानंतरचं गीत ऐकण्यापूर्वी एक महत्त्वाचं निवेदन। श्रोते हो, आपण ज्या पृथ्वीवर राहतो त्या पृथ्वीवर मानवाबरोबरच पशु, पक्षी आणि इतर जीवसृष्टीचाही समान अधिकार आहे। प्राण्यांप्रती दया, माया आणि संवेदनशीलता ही आपल्या संस्कृतीची ओळख आहे। आजच्या धावपळीच्या जीवनात अनेक भटके आणि पाळी प्राणी दुर्लक्ष, उपासमार आणि क्रूरतेला सामोरं जात आहेत। आकाशवाणीच्या माध्यमातून आम्ही सर्व नागरिकांना आवाहन करतो की प्राण्यांशी प्रेमाने वागा, त्यांच्यावर होणारी क्रूरता रोखा आणि त्यांच्या संरक्षण

श्रोता ने गीत आपने सुना फिल्म पुष्पा टू द रूल से, आवाज़ जावेद अली और मधुबंती बागची की थी। गीत के बोल रकीब आलम, सिजू थरवूर के थे, संगीत देवीश्री प्रसाद का था।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमरीका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाह

0: सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमरीका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट में

0: आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे।
1: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूँ मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
3: विकसित भारत 2047, जब उस गोल उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नए नए टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन करें, रिस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
1: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: विकसित भारत जीरामजी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान

0: और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल किउआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानाऊ से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

श्रोता ने गीत आपने सुना फिल्म भूल भुलैया 2 से, आवाजें अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की थी। गीत के बोल समीर के और संगीत प्रीतम का।

श्रोता गीत आपने सुना फिल्म गुड न्यूज़ से, आवाज़ें बादशाह हार्डी संधू, लीसा मिश्रा और असीस कौर की थी। गीत के बोल तनिष्क बागची के और संगीत भी इनका ही था।

0: छाया गीत
1: लग जागने।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें

प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। एक अभिनेत्री जो अपने अभिनय की शुरुआत स्कूल और कॉलेज के थिएटर से करती है, धीरे धीरे टीवी सीरियल की ओर बढ़ती है, बॉलीवुड में आकर अपनी एक्टिंग के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाती है और आज ओटीटी की क्वीन कहलाती है, वो है शेफाली शाह।

बॉलीवुड की ये खूबसूरत अदाकारा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 22 मई 1973 को महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मी शेफाली बचपन से ही अभिनय करना चाहती थी। वे एक मॉडल, अभिनेत्री और चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। उनके पिता का नाम सुधाकर शेट्टी और माता का नाम शोभा शेट्टी है। वे अपने माता पिता की इकलौती लाडली संतान हैं और उनका पालन पोषण एक गैर फिल्मी पृष्ठभूमि में हुआ। साल 2000 में उन्होंने निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह से शादी की, जिनके साथ उनके दो बेटे आर्यमन और मौर्य हैं।

शेफाली शाह का अभिनय करियर गुजराती मंच से शुरू हुआ। बचपन से ही उन्हें कला की ओर बहुत झुकाव था, जिसमें गायन और नृत्य शामिल थे। उन्होंने भरतनाट्यम में प्रशिक्षण लिया। उनकी अभिनय यात्रा 10 वर्ष की आयु में गुजराती मंच पर किए नाटक द ओमेन से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने डेमियन थॉर्न पर आधारित चरित्र को बखूबी निभाया। इंटर कॉलेजिएट नाटकों में काम करने के साथ साथ उन्होंने गुजराती रंगमंच में काम करके अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दे दिया था।

शेफाली शाह ने थिएटर करने के बाद साल 1993 में टीवी की दुनिया में कदम रखा। बनेगी अपनी बात सीरियल से छोटे पर्दे पर उन्होंने डेब्यू किया, फिर आरोहण, हसरतें, पतझड़, कभी कभी, सी हॉक्स, राहें और रामायण जैसे सीरियलों में अभिनय कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। शेफाली शाह कमाल की एक्ट्रेस, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आज उनके नाम 25 से ज्यादा फिल्में हैं और इन सभी फिल्मों में उनका काम बोलता है। उनकी फिल्मी यात्रा की शुरुआत पर बात की जाए तो 1995 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला से उन्होंने डेब्यू किया। इस फिल्म में उनकी भूमिका बहुत छोटी थी।

1998 में रामगोपाल वर्मा की ही एक फिल्म सत्या में शेफाली ने भीकू महात्रे की पत्नी प्यारी महात्रे की भूमिका निभाई, जो मनोज वाजपेयी द्वारा निभाई गई एक माफिया सरगना की पत्नी थी। इस फिल्म में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का स्क्रीन अवार्ड जीता। उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला। होई होई।

फिल्म सत्या में अपने शानदार काम के बावजूद शेफाली शाह को उतनी फिल्मों के प्रस्ताव नहीं मिले जितनी उन्हें उम्मीद थी। विपुल शाह द्वारा बनाई गई गुजराती फिल्म दरिया छोरू में कास्ट किया गया। विपुल शाह की इस फिल्म के लिए शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। 2000 में निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा की फिल्म आई मोहब्बतें। इस रोमांटिक फिल्म में शेफाली को एक

इसके ठीक एक साल बाद यानी 2001 में उन्हें मीरा नायर की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मानसून वेडिंग में लिया गया। इस फिल्म में शेफाली ने रिया वर्मा की भूमिका निभाई। ये फिल्म अपने समय से आगे की फिल्म मानी गई। रिया वर्मा की भूमिका में शेफाली वास्तविक पात्रों में से एक थी। उन्होंने बचपन में बहुत दर्द का अनुभव किया था, जिसके कारण रिया वर्मा रिश्ता नहीं बना सकी और अविवाहित रहने का फैसला करती हैं। एक ऐसा किरदार शेफाली का था जो सबसे जटिल था। इसे शेफाली ने बखूबी निभाया। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली और कई

2005 में विपुल शाह के निर्देशन में शेफाली ने पारिवारिक मेलोड्रामा वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम में काम किया। इस फिल्म में वे अमिताभ बच्चन की पत्नी और अक्षय कुमार की माँ के रोल में नजर आती हैं। सुमित्रा ठाकुर के रूप में उनकी भूमिका एक सख्त माँ की थी जो अपने पति को अपने गैर जिम्मेदार बेटे को अनुशासित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए दूसरी बार फिल्म फेयर का नामांकन मिला। अभिनय के वक्त वो अमिताभ बच्चन से आधी उम्र की और अक्षय कुमार से लगभग 4 साल छोटी थी, लेकिन अपने अभिनय के दमखम से उन्होंने भूमिका में जान डाल दी।

निर्देशक फिरोज अब्बास खान की फिल्म गांधी माय फादर का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। 2007 में आई इस फिल्म में दर्शन जरीवाला और अक्षय खन्ना के साथ कस्तूरबा की भूमिका में शेफाली शाह नजर आती हैं। ये फिल्म महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी की जीवनी पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली ने कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाई, जो अपने पति महात्मा गांधी और बेटे हरिलाल के बीच आजीवन संघर्ष से त्रस्त हैं। इस फिल्म में उनकी भूमिका ज्यादा आंतरिक है, क्योंकि वो चुपचाप सब कुछ देखती हैं कि हरिलाल क्या कर रहा है। उन्होंने अपने दो अहम दृश्यों में बेहतरीन काम किया, जिसमें वे गांधी पर हरिलाल को छात्रवृत्ति न देने के लिए भड़कती हैं, और जहां वे धर्म परिवर्तन के बाद हरिलाल से भिड़ जाती हैं। कस्तूरबा के रूप में उनका अभिनय शानदार नजर आता है। टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और 2008 में जी सिने अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया।

2007 में ही फिल्म द लास्ट लियर में शेफाली ने अमिताभ बच्चन के साथ परेशान और चिड़चिड़ी स्वभाव वाली और लिव इन पार्टनर की भूमिका निभाई है। ये एक ऐसी भूमिका थी जिसे वे अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ भूमिका मानती हैं। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। फिल्म को सराहना के साथ ही 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नाम दिया गया और शेफाली शाह ने सहायक अभिनेत्री का खिताब भी जीता। इस फिल्म के निर्देशक थे ऋतुपर्णो घोष।

सुभाष घई की क्राइम थ्रिलर फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में शेफाली ने रीमा माथुर की भूमिका निभाई। 2008 में आई इस फिल्म में शेफाली एक बंगाली कार्यकर्ता और एक उर्दू प्रोफेसर अनिल कपूर की पत्नी के अहम रोल में नजर आती है।

2011 में उन्होंने विपुल शाह के प्रोडक्शन में कुछ लव जैसा फिल्म में एक युवा गृहिणी की भूमिका निभाई, जो जेल से भाग रहे एक अपराधी राहुल बोस के साथ एक रोमांटिक दिन बिताती है। कहते हैं अपने इस रोल को समझने के लिए शेफाली ने ठाणे जेल का दौरा भी किया और अपने चरित्र को समझने के लिए कैदियों से बात भी की।

साल की अनुपस्थिति के बाद शेफाली शाह ने मोनाली ठाकुर के साथ नागेश कुकनूर की सामाजिक समस्या पर बनी फिल्म लक्ष्मी में काम किया। इस फिल्म में शेफाली शाह ने एक वैश्याले की मालकिन ज्योति की भूमिका अदा की है। 2014 में आई ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म थी। दिल धड़कने दो, जी हाँ, 2015 में निर्देशिका जोया अख्तर की ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म आई। इस फिल्म में शेफाली अनिल कपूर की पत्नी के रोल में नजर आईं। फिल्म के अन्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह हैं। इस फिल्म में उनके प्रभावी अभिनय के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर नामांकन उन्हें मिला।

मल्होत्रा की अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा वॉरियर के रीमेक में उन्हें एक छोटी सी सहायक भूमिका मिली। इस फिल्म में उनके चरित्र मारिया फर्नांडिस को एक ऐसी महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो अपने व्याभिचारी पति के विवाह के बाद हुए अवैध बच्चे को स्वीकार करती है। शेफाली के बारे में कहा जाता है कि वो अपने किरदार में एक ऐसी सादगी लाती हैं जो मुख्य धारा के सिनेमा में शायद ही कभी देखी जाती है। फिल्म जूस नीरज घाईवान द्वारा 2017 में आई एक ऐसी ही फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली की निगाहें शब्दों से कहीं अधिक बयां करती है और उनका अभिनय लाजवाब नजर आता है।

वंस अगेन रोमांटिक फिल्म का जिक्र भी यहाँ करना बहुत जरूरी है। 2018 में आई इस फिल्म को कमल सेठी ने लिखा और निर्देशित किया। शेफाली शाह और नीरज का भी अभिनीत ये फिल्म दो मध्यम वर्गीय आयु वर्ग के लोगों की कहानी है। इस फिल्म में काम करने के बाद शेफाली ने कहा कि वो लंबे समय से इस तरह की फिल्म का इंतजार कर रही थी। शेफाली इन सभी फिल्मों के अलावा ब्रदर्स, द जंगल बुक, कमांडो 2 और डॉक्टर जी जैसी फिल्मों के लिए भी काफी प्रसिद्ध हैं।

शेफाली शाह ने इन सभी फिल्मों में अपनी एक्टिंग और किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया हो, लेकिन ये स्टारडम तब और बढ़ा जब उन्होंने ओटीटी की दुनिया में कदम रखा। जी हाँ, शेफाली शाह ने साल 2019 में आई वेब सीरीज दिल्ली क्राइम से अपनी प्रतिभा की एक अलग ही मिसाल पेश की। 2023 में उन्हें दिल्ली क्राइम में उनके अभिनय के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इस सीरीज में उनकी प्रतिभा जो दर्शकों के सामने आई उसे देखकर हर कोई अवाक रह गया। इस वेब शो में शेफाली ने डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी का किरदार निभाया, जिन्हें दिल्ली में एक क्रूर सामूहिक बलात्कार की जाँच करने का काम सौंपा जाता है।

ब्लैक कॉमेडी डार्लिंग्स में शेफाली और आलिया भट्ट माँ और बेटी के रूप में अभिनय करती हैं। इस फिल्म को जसमीत के रीन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है। ये उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म है जिसकी पटकथा परवेज शेख ने लिखी। फिल्म में विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। इस फिल्म को कई अवार्ड्स मिले। शेफाली ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का खिताब जीता।

2022 में आई ह्यूमन में शेफाली ने डॉक्टर गौरीनाथ की भूमिका निभाई। विपुल शाह द्वारा निर्देशित ये शो दवा कंपनियों और बड़े निजी अस्पतालों के बीच सांठगांठ की पड़ताल करता है। वहीं सोशल थ्रिलर फिल्म जलसा में उन्होंने विद्या बालन के साथ अभिनय किया। वे इसमें रुखसाना नाम की महिला का किरदार निभाती नजर आती हैं, जिसकी बेटी एक हिट एंड रन दुर्घटना का शिकार हो जाती है। इस फिल्म के लिए उन्हें मेलबर्न के वार्षिक भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला।

अविनाश अरुण द्वारा सहलिखित और निर्देशित थ्री ऑफ अस 2023 की फिल्म है। इसमें शेफाली ने शैलजा देसाई की भूमिका निभाई है, जिसे डिमेंशिया है और वो अपने बचपन को याद करने के लिए यात्रा पर निकलती हैं और अपने दर्दनाक अतीत का सामना करती हैं। स्वानंद किरकिरे।

इस फिल्म में उनके पति और जयदीप अहलावत बचपन के दोस्त की भूमिका में हैं। इससे पहले 2020 में शेफाली शाह ने दो स्व अभिनीत कोविड-19 आधारित लघु फिल्मों समडे और हैप्पी बर्थडे मम्मी जी में लेखन और निर्देशन भी किया। 2025 में निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह की आगामी फिल्म हिसाब, इस फिल्म में शेफाली शाह, जयदीप अहलावत और अभिषेक सिंह मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

0: शेफाली शाह को अपने बेजोड़ अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार शामिल हैं। सेट पर सबसे ज्यादा खुश रहने वाली बहुमुखी प्रतिभा की धनी अभिनेत्री शेफाली ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो जो भूमिकाएं निभाती है वे उस फिल्म का मुख्य किरदार होती हैं और वो अपनी भूमिकाओं में खामोशी को ढूंढती हैं। शेफाली अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि वास्तव में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कलाकार बनूंगी और फिल्मों में यूं काम करूंगी। लंबे वक्त तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं पूरी तरह से अभिनय करूंगी, ये बस होता गया और जो भी किरदार मैंने निभाए वो बहुत मजबूत किरदार बनकर उभरे हैं। तो ये था अभिनेत्री शेफाली शाह पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार। आलेख, शोध और स्वर मंदाकिनी जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। छाया गीत कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: आइए सुने छाया गीत। सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। कहते हैं जिसे मोहब्बत हो गई उसे अपने महबूब के अलावा दुनिया में कुछ नजर नहीं आता। इश्क में डूबे इंसान को अपने महबूब की हर चीज दुनिया जहान की सबसे खूबसूरत चीज नजर आती है। उसकी मासूमियत, उसकी सादगी, नाजुकी, उसका हुस्न, उसकी नजरें। जिसने तेरी नजर को देख लिया उसको दुनिया नजर नहीं आती। सच, उन्हें देखकर ये लगता है जैसे हर अधूरी मोहब्बत मुकम्मल हो गई हो।
1: कहां से लाई

अब तक मेरी यादों से मिटाए नहीं मिटता भीगी हुई एक शाम का मंजर, तेरी आंखें। आप इश्क में हैं और दिल में जख्म ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन तमाम दर्द और जख्म के बाद भी दिल लगाना भला कौन छोड़ पाता है। जख्म झेले, दाग भी खाए बहुत, दिल लगाकर हम तो पछताए भी बहुत। वो तमाम पन्ने जिन पर लिखी हैं तेरी मेरी कहानी, सच कहूं इश्क हो जाएगा मेरी दास्ताने इश्क से। रात भर जागा करोगे इस कहानी के लिए।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मुद्दत के बाद आज उसे देखकर एक बार दिल तो धड़का मगर फिर संभल गया। उनके आने के बाद भी देर तलक उनका इंतजार रहा। कभी चांदनी रातों में तेरे ख्वाबों में खो जाते थे हम, अब अकेले रातों में तेरी यादों में बिखर जाते हैं हम। शाम होते ही चिरागों को बुझा देता हूँ, दिल ही काफी है तेरी याद में जलने के लिए। उजड़ उजड़ कर संवरती है तेरे हिजर की शाम, उजड़ उजड़ कर संवरती है तेरे हिजर की शाम। न पूछ कैसे गुजरती है तेरे हिजर की शाम।

न जाने क्यों हमें इस दम तुम्हारी याद आती है, जब आंखों में सितारे चमकते हैं शाम से पहले। दिल की चाहत होती है तुम बैठो कुछ देर हमारे सामने यकीन के लिए। दवा जरूरी तो नहीं हर वक्त सुकून के लिए। तुम्हें पता है जब तेरा दर्द मेरे साथ वफा करता है, एक समंदर मेरी आंखों से बहा करता है। ये शाम की तन्हाइयां तेरी यादों के काफिले, एक कसक, एक टीस, एक सूनापन, एक अधूरी सी आहट। दर्द खामोश रहा, टूटती आवाज रही। दर्द खामोश रहा, टूटती आवाज रही। मेरी हर शाम तेरी याद की हमराज रही।

अक्सर पूछते हैं लोग, किसके लिए लिखते हो? अक्सर कहता है दिल, काश कोई होता। साथियों, इन्हीं अफसानों के साथ पूरा होता है आज के छाया गीत का सफर। गीत संगीत की ऐसी ही सुरीली महफिल में फिर होगी मुलाकात। शेफाली कपूर को दीजिए इजाजत, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।